You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Olive, 106.3 Radio Olive. Gio Bindas. Awesome. Radio Olive par aane wala gaana, cool song of the hour.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome.

जो तुझको देखा आसमां में चांद था नहीं, कहीं पे छुप गया के कहता लगता नहीं। इससे हसीन मैंने देखा कहीं कुछ के लोग यूं ही

तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:07 हो रहे हैं। यहाँ पे हम दो धुरंधर पहुंच चुके हैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातें करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वक्त बिताने के लिए। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव,
1: और मैं हूँ आपकी कशिश। और क्या,
0: और क्या
1: लय में, और क्या धुन में आपने जो है माइक ऑन किया है, मजा ही आ गया मुझे।
0: क्या बात कर रहे हैं,
1: मतलब
0: गुजबम्ब
1: कुछ भी।
0: मैं कोशिश कर रहा था ना तनिषा की तरह बात करने की। गूज बम्स ओके,
1: एक्सक्यूज मी। आज पता है मेरे नाश्ते में अभी क्या लेकर आई हूँ मैं?
0: डिक्शनरी
1: नहीं,
0: अच्छा
1: खोसा।
0: भाई माइक साफ करना पड़ेगा इसके खोसा बोलने के बाद। बुलाओ नदीम भाई को, ये 3 लीटर जो है गिर गया इसमें। चलो जो भी हो।
1: इतना तो यार खोसा जो है देख के पानी नहीं आता, मुंह में बोलने में आ जाता है।
0: भाई मुझे हर बार लगता है कि फ्रेंच बोलने के लिए ना मास्क पहनना ही पड़ेगा।
1: एग्जैक्टली,
0: नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप जिन्हें पता है उन्हें पता है। इफ यू हैव टू एक्सप्लेन द जोक देन देयर इज नो पॉइंट।
1: नहीं यार, हमारे लिसनर्स बहुत स्मार्ट है, उन्हें समझ आ जाएगा। अब देखो, अब हमने ये कह दिया है, अब सबको समझना पड़ेगा।
0: सबको समझ आ
1: रहा है, कोई नहीं कह सकता कि हमें नहीं समझ आ रहा
0: है। समझ भी नहीं आया, नहीं मजाक कर रहे थे वैसे। ठीक है, वैसे बहुत सारी बातें जो है यहाँ पे हम करेंगे आपके साथ, मगर गाने भी जो है बहुत प्यारे प्यारे आपके लिए लेकर आए हैं।

0: दूरी बिल्कुल सही जाएगी अगर आपने 106.3 ट्यून इन करा और इस गाने को सुन लिया।
1: कटिया जो सारी रतिया रखिया संभाल रखिया।
0: संभाल के तो रखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाहे वो चीजें हों, खिलौने हों, लोग हों,
2: रिश्ते
0: हों, जॉब हो, कुछ भी हो, संभाल के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर संभाल के नहीं रखे तो दिक्कत हो जाती है।
3: दोनों में जो था मैं वो नहीं।
0: तो चलिए आज जो है हम एक बहुत ही रूहानियत से भरे गाने को सुनते हैं। मैं वापस आऊंगा मूवी का है ये, आदित्य आर के और अरमान और समीर ने गाना जो है मिलके गाया है। तो चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं। मगर एंजॉय करने के पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, वो ये है कि कर दीजिए मैसेज भाई 3311106
2: भाई। अब तो जैसे सांस लेना नॉर्मल है बिल्कुल वैसे हमारे हमें मैसेज करना भी नॉर्मल हो जाना चाहिए। उठते आंख खुलते आपको उन लोगों को चैन आएगा, सांस कैसे आएगी,
0: मतलब हमारे चैन के लिए सुबह सुबह आप अपनी एंग्जायटी बढ़ा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है, चलता है।
2: मोटिवेशन है, सुबह की इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। बस आप एजेंडा बता दीजिए आज क्या क्या करने वाले हैं, क्या कुछ सोच रखा है पॉजिटिव नोट पे, हम भी बता देंगे, आप भी बता दीजिए। बस ऐसे ही तो देखिए प्रेम बढ़ता है आगे।
0: क्या बात कर दी।
2: तो 3311106 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, जल्दी से आइए, ऑडियो भेजिए, व्हाट्सएप जो है मैसेज भेजिए। एंड बाकी बहुत बैलेंस्ड गाने जो है आज सुदेव आपके लिए लेकर आए हैं, थोड़े पुराने, थोड़े नए, थोड़े आइकॉनिक और थोड़े ऐसे जो आइकॉनिक बनने वाले हैं।
0: जी
2: सब बस एंजॉय करिए और जल्दी से आ जाइए
0: और कहते रहिए
2: जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲੋ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
2: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।
3: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: नीति मोहन की आवाज में म्यूजिक टीचर मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: सच बताऊंगा मैं यहाँ पे झोल मोल कुछ नहीं करूंगा। मैं एक मिनट के लिए अपना नाम भूल गया था।
1: एक सेकंड के लिए?
0: हाँ, एक सेकंड के लिए।
1: कैसे भूल सकते हो यार सुदेव, आपको तो आप पूरा कतर जानता है, पूरे कतर के लोग आपका नाम जानते हैं।
0: शायद इसलिए भूल गया था ना। नहीं, ऐसे ऐसा हुआ था कि मेरे मन में जो मैं कुछ सोच रहा था ऐसे बैठ के, और ऐसे बचपन की कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था, तो मुझे घर में किसी और नाम से बुलाते हैं तो मेरे मन में वो आ रहा था, और जैसे ही मैं बोलने वाला था तो मैं अपना निकनेम बोलने वाला था घर का, इसलिए मैंने रुका।
1: क्या है आपका निकनेम?
0: नाइस ट्राई। तो आज मैसेज आया है जुल्फी भाई का। जुल्फी भाई ने मैसेज किया है, फोटो भेजा है हमें, और उन्होंने लिखा है कि अ मैन हु इज मास्टर ऑफ पेशेंस इज अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा लगा आपने मैसेज भेजा, और उसके साथ साथ उन्होंने एक और मैसेज भेजा, एक फोटो भेजा एक्चुअली अपने बच्चों के साथ। बहुत ही प्यारा फोटो है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा फोटो भेजा है सुबह सुबह। यस, क्यूटनेस। और मेरोनिसा जी का मैसेज आया है, लिखा है ऑसम मॉर्निंग सुदेव एंड कशी करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बढ़िया मॉर्निंग हम विश करते हैं। दो दिन आंटी के मैसेज नहीं आया, मैं दुखी हो गया था कि
1: अरे ऐसे कैसे मुझसे बोल रहे थे वो रोज कि बेचारा सुदेव अकेले अकेले शो संभाल रहा है। मैंने बोला अकेले उन्हें मजा आ रहा है।
0: और चलो इसमें हम कमेंट नहीं करते हैं। और ऋषिन का मैसेज आया, लिखा है एवरीथिंग विल कम टू यू एट द राइट टाइम, कीप गोइंग, गुड मॉर्निंग जियो बिंदास। बिल्कुल सही बात कही है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
1: टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छी चीजें आ जाती है आपकी लाइफ में, जैसे मैं सुदेव की लाइफ।
0: क्या बात कर दी आपने,
1: करेक्ट टाइम पे जब उन्हें मेरी जरूरत थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं कैश रखता नहीं हूँ और कशिश हाथ में कैश रखती है तो जरूरत हो ही जाती है। और एक और मैसेज आया है, worry about your character and not your reputation, because your character is who you are and your reputation is only what people think of you. Oh. Have a great day. मैं इसमें थोड़ा सा और मतलब विश्लेषण जो है देना चाहूंगा अपना। कैरेक्टर पे भी वर्क करना इंपॉर्टेंट है, रेप्यूटेशन में भी वर्क करना इंपॉर्टेंट है। जरूर ये बात सच है कि हर कोई हमारे बारे में अच्छा रेपो नहीं रखेगा, दैट इज तो है, दैट इज ट्रू, मगर रेप्यूटेशन के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट पढ़ा, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, इट्स कॉल्ड शेमा। शेमा यानी कि प्रिजर्व करना, ठीक है। तो हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें चाहिए, मगर जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी है उनको क्या हम प्रिजर्व कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच ये मैसेज भेजने के लिए शशिकांत जी। और नेहा जी का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग करके, और लिखा है कि नसीब अच्छा ना हो तो खूबसूरती का कोई फायदा नहीं, दिलों के बादशाह अक्सर फकीर हुआ करते हैं। वाह वाह वाह, बड़े मौज कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये पढ़ के। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैसेजेस भेजते रहिए 3311063 पर, और थोड़ी देर में हम जो है गानों के उस पर वापस आएंगे एक सवाल लेकर, ये टेस्ट करने के लिए आप पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवी, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और कशिश से
1: कितने ज्यादा स्मार्ट हैं,
0: कितने ज्यादा तेज हैं। स्मार्ट मैं नहीं बोलूंगा, तेज है,
1: तेज
0: फास्ट। चलो चेक करते हैं फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश,
0: और यहां पे जो है हम आ चुके हैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, सवाल पूछने के लिए ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में।
2: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: जी हाँ, ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का आज का सवाल काफी सिंपल है, सरल है, ज्योग्राफिकल है, और सवाल है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से कंट्री का है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबा कोस्ट लाइन कौन से कंट्री का है आपको बताना है। और ये बहुत फेमस कंट्री है,
1: yes.
0: इंडिया से बहुत लोग यहाँ जाते हैं,
1: yes.
0: और
1: कतर
0: है? नहीं, पंजाब से बहुत लोग यहाँ जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे, अच्छी है, ठीक है, मैं नहीं कर रहा स्टीरियोटाइप। केरला से भी बहुत लोग यहाँ जाते हैं।
1: देखिए, इन शॉर्ट वहाँ पे जो है ऐसे, मतलब जैसे कतर में बहुत सारे इंडिया के लोग हैं, बट मूवीज में ज्यादा यही दिखाया जाता है कि इंडिया के लोग वहीं जा रहे हैं।
0: और थोड़ी देर पहले जो गाना प्ले हुआ था ओए लकी लकी ओए, उसमें भी इस सवाल का जवाब छुपा हुआ था। ठीक है, जब जुगनी इंग्लिश बोलने की बात करते हैं वहां पे, तो इस सवाल का जवाब वहां छुपा हुआ है। अब बेटा सोचो। इस सवाल का जवाब भेजना आपको 3311106 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी, और बता दीजिए, प्रूफ कर दीजिए, दुनिया को दिखा दीजिए कि आप पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और कशिश से
1: कितने तेज हैं,
0: कितने तेज।
1: अब देखिए, मैंने तेज बोला है।
0: क्या बात।
1: तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो कौन सी कंट्री की है बता दीजिए हमें, कॉल करिए जल्दी से 3311106 पर मैसेज।
0: और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा गाना आपके लिए हम प्ले

0: यार जाने से पहले चली गई वो वो एक दिन आया ही नहीं, आने ही नहीं दिया।
1: कोई बात नहीं, होता है, होता है, होता है। मैं जरा इन्हें पानी पिला के आती हूँ, आप जो है आराम से गाने एंजॉय कीजिए।
0: मैं शवर के नीचे रोकर आता हूँ, तब तक आप लोग गाना सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए
1: जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: यहाँ पे भाई सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सा है ढूंढ के लोग कोस्ट लाइन पर घूमे जा रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, बस मन किया ये बोलने का तो कर दिया, अब मन कोई गांडीव थोड़ी ना है जहां सादा वहां सद गया। बट यहाँ पे जो है एक मैसेज आया हमारे पास सृष्टि का, सृष्टि ने मैसेज किया है, जरा सृष्टि का ऑडियो हम सुनते हैं।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज सृष्टि एंड द आंसर ऑफ टुडेज क्वेश्चन इज कनाडा।
0: और मुझे ध्रुव ने मैसेज किया है, ध्रुव ने मैसेज किया, लिखा है कि गुड मॉर्निंग दिस इज ध्रुव एंड द आंसर टू टुडेज क्वेश्चन इज कनाडा, और सही जवाब दिया है जी कनाडा ही है।
2: कनाडा जी, कनाडा, इतने सारे हिंट दे दिए थे हमने।
0: हाँ, और सबसे बढ़िया तरीके से जवाब मिला है हमें, बहुत लोगों ने जवाब दिए भेजा है, और मैं बता देता हूँ थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ इसके बारे में। कनाडा का जो कोस्ट लाइन है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2,80 किलोमीटर, अगर हम माइल्स में बोले तो 1,25,567 माइल्स जो है, और तीन डिफरेंट ओशंस के साथ ये बॉर्डर करता है, अटलांटिक, पैसिफिक और आर्टिक। ठीक है, तो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा,
2: बहुत बड़ा है, सुदैव के दिल से बड़ा
0: उतना नहीं है। उतना तो मुझे लगता नहीं है इस दुनिया में कुछ होगा फिलहाल। यहाँ पे फ्रेश सॉन्ग सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
2: जी अविनाश रेडियो।

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: अब क्या कर सकते हैं, रखो रखो, निकालना है निकाल के
1: क्या बात है तुम्हारी, तो कोई भी नहीं सुनता
0: बिल्कुल। और आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है, ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव,
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे चलिए मौसम के बारे में बात करते हैं, चेक करते हैं कि क्या आज मौसमिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है,
1: और लग
0: नहीं रहा कि आज भी मौसमिंग उतना बढ़िया होगा, क्योंकि 33 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिखाया जा रहा है और 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा बह रही है। और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा थोड़ा ठंडा हो सकती है?
1: बिल्कुल हो सकती है।
0: प्लीज,
1: कल मैं ऑफिस से निकलने के बाद, कल मैं जो है 7 बजे ऑफिस से निकली थी एंड मैं गई थी मीनापोर्ट।
0: ओके
1: यार, मुझे लगा कि वहां तो एटलीस्ट थोड़ा सा
0: सुकून मिलेगा,
1: थोड़ी हवा ठंडी होगी।
0: नहीं,
1: लपट चल रही थी शाम को 7:30-8 बजे। मुझे लगा कि यार ये क्या बात हुई यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि किचन में खड़े हुए हैं, तवे के पास खड़े होके जो आती है ना भाप, वो आ रही है,
0: वो हो सकता है, वो सी साइड में जब भी हम जाते हैं तब ये रखता है, ह्यूमिडिटी थोड़ी होगी वहाँ पे,
1: बस उबलने से पहले वाला हाल था।
0: हाँ, इसलिए क्या काफी फेयर हो गया स्किन टोन आपका, कैसे?
1: Excuse me.
0: क्या बात कर रहे हो?
1: तारीफ थी,
0: नेचुरल स्टीम लेकर आए हो क्या?
1: तारीफ जैसे क्या करूँ ना यार, टैनिंग हो गई है कल।
0: आजकल मैं बहुत ज्यादा ब्रिटिश ह्यूमर देख रहा हूँ ना, तो मेरी मेरे ह्यूमर सेंस में कुछ बहुत बड़ी खराबी आ गई, सॉरी। तो या बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स में भी, और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस और लोएस्ट है अभी जो है 33 डिग्री सेल्सियस। और अभी आप लोग जो बाहर हैं हमें सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि जरा नज़ारे दिखाइए हमें बाहर के, कैसा चल रहा है, सूरज मामू कैसे चमक रहे हैं, और बाहर कैसा है आपके लिए, कैसी है गर्मी, मौसम कैसा लग रहा है आपको, बताइए हमें। 3311063 पर मैसेज करके फोटोज भेज सकते हैं हमें, जल्दी जल्दी तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी फोटोज भेजिए, हमारा भी दिल बहला दीजिए और खुश कर दीजिए, और गाने सुनते हुए एंजॉय करते हुए कहते रहिए
1: जियो बिंदास।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
2: मैं हूं अनिल कपूर, वीडियो हॉल

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास मॉर्निंग,
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: झुंड मूवी का गाना हमने सुना, आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव,
1: मैं हूँ आपकी कशिश।
0: ये रोने का कारण क्या है देवी?
1: रोने का कारण ये है कि यहाँ से स्टूडियो से सूरज भी नहीं दिखता, सनलाइट हाँ, भी नहीं दिखता।
0: क्या बात कर रहे हैं, सूरज की रोशनी जैसे चमक के साथ हम आए हैं, आप क्या बात कर रहे हो?
1: एक तो मुझे फोटोज नहीं दिखा रहे, स्क्रीन कवर करके बैठ गए हैं।
0: आप मोटा बोल रहे हो ना मुझे?
1: नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि आप
0: नहीं, आप सीधा सीधा मुझे बोल दो ना, मोटा मुंह पे बोल दो।
1: मैं टेढ़ा टेढ़ा बोलूंगी तो क्या प्रॉब्लम है आपको?
0: टेढ़ा टेढ़ा कैसे, मैं वैसे ही बैठ जाऊँ तब को कुछ भी नहीं दिखेगा
1: यार? मतलब आप लोग इतनी प्यारी प्यारी फोटोज भेज रहे हैं एंड मुझे दिख भी नहीं रही है, क्या मतलब है?
0: जैसे अभी एक फोटो आया है हमारे पास, ये हमें भेजा है मिशकात जहरा ने।
1: देखिए कितना प्यारा नाम है।
0: जी बिल्कुल, बहुत प्यारा नाम है। हमने पूछा भी है कि भाई आपके नाम का मतलब क्या है, बता दीजिए प्लीज। और उन्होंने लिखा है कि सन सेड लेट्स बी फ्रेंड्स एंड नाउ आई एम रोस्टेड, करंट स्टेटस 99% सन 1% ह्यूमन, दिस इज मी मेल्टिंग एट 7 AM। अरे अरे, मतलब तपती हुई धूप है सुबह सुबह से ही। तो निष्काज जी ख्याल रखिए अपना, हम यही बोल सकते हैं।
1: यस, पानी पीजिए लेकिन एकदम धूप में, ठंडा ठंडा पानी मत पीजिएगा, हाँ, ये भी नुकसान करता है।
0: जी बिल्कुल।
1: एंड बस अपना ख्याल रखिए, मैं भी यार रोस्ट ही हो रही हूँ।
0: हाँ, क्या बात कर रहे हैं?
1: आप मुझे रोस्ट नहीं करते हो?
0: मैं कहाँ रोस्ट करता हूँ
1: अपनी बातों से?
0: नहीं बिल्कुल नहीं,
1: पूरी मेरी बुराई कर देते।
0: कहाँ बुराई की हमने? मैंने कोई एक बुराई बताओ जो मैंने की है।
1: देखिए दो चीजें जो इनके साथ हो रही है वही मेरे साथ भी हो रही है, कि ये मुझे रोस्ट भी कर रहे हैं और दूसरा मैं पिघल भी जाती हूँ फिर इनकी बातों। दो में से प्यारी बातें करते हैं और मैं पिघल जाती हूँ, क्या बात है।
0: मगर हम नहीं पिघलते, हम जाकिर भाई के फैन है ना, हम गुरुजी के सामने ऐसे थे ऐसे थोड़ा ना हो जाए। बिल्कुल। और यहाँ पे हमें मैसेज किया है हरपाल जी ने, लिखा है गुड मॉर्निंग जी, हैव अ ब्लेस्ड डे, हरपाल संधू फ्रॉम दुकान। थैंक यू सो मच जी, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। और मुझे मृणाल का मैसेज आया है, उन्होंने भी एक फोटो भेजा है और लिखा है कि गुड मॉर्निंग फ्रॉम वुकेर, और वुकेर साइड में मुझे लगता है थोड़े बादल हैं इसलिए सूरज की रोशनी ना तपती हुई तरीके से जो है धरती पर नहीं पड़ रही है,
1: पड़ रही है। एंड ये थोड़े खिसके हैं साइड हुए, तो मैंने देखी कितनी प्यारी फोटो, आसमान कितना अच्छा दिख रहा
0: है। मैं खिसका नहीं हूँ, मैंने फोटो एनलार्ज किया है।
1: बादल कितने अच्छे दिख रहे हैं,
0: बट इतने सटल तरीके से कशिश ने मुझे मोटा बोला है गाइस, बहुत ही प्यार से मोटा भाई बना दिया उन्होंने मुझे।
1: यस, देखिए मोटा भाई होता है क्या इंडिया में, मोटा भाई मतलब होता है बड़ा भाई।
0: अच्छा अच्छा,
1: इट्स ओके।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: इट्स ओके, थोड़ा
0: एक्स्ट्रा। बट हिंदी में मोटा मतलब एक ही होता है, ठीक है।
1: ऐसे देखिए हम किसी को बॉडी शेम नहीं करते, आपको हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, मोटा मतलब तो इंसान।
0: ये मुझे बहुत क्यूट लगता था, ठीक है, स्कूल में जब हम पढ़ते थे एक सर थे हमारे नैन सर करके, ठीक है, तो नैन सर कभी किसी को मोटा नहीं बोलते थे क्योंकि सर थोड़े चबी थे। सर हमेशा हर को बोलते ये थोड़ा हेल्दी साइड में,
1: हेल्दी साइड में,
0: थोड़ा हेल्दी साइड में है लड़का, ठीक है, थोड़ा दौड़ा बौड़ा करो। मैंने बोला अगर मैं ऑलरेडी हेल्दी साइड में हूँ तो मैं क्यों दौड़ू मेरे इस लॉजिक के सामने।
1: ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, हम बॉडी पॉजिटिविटी पे बात करेंगे, आपका अंदर से नहीं नहीं इंटरनली हेल्दी होना इम्पोर्टेंट है। ये देखिए वेट बढ़ता कम होता रहता है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, इट्स ओके।
0: हाँ, बट ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, मैं हम भी ध्यान दे रहे हैं, मैं हर दिन अपने वेट पे ध्यान देता हूँ।
1: यस, कम तो नहीं,
0: कम तो नहीं हो रहा है बढ़ भी नहीं रहा है
1: कोई बात नहीं, होता है, सब होता है, होता है। होता है। अपने लिए अपनी बॉडी को लेकर जो है हैप्पी रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खुश रहना इम्पोर्टेंट है। बस ये कहते हुए हम मैसेज पढ़ेंगे।
0: मुझे ना धुरंधर का सीन याद आ गया जहाँ पे जमाली बोलते हैं वाह क्या बात, बहुत बढ़िया,
1: क्या बात करते,
0: क्या बात करते, और यही बात बोलते हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी उपिंदा।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश,
0: और यहां पे हम बात करने वाले हैं फिटनेस. और इस बार फिटनेस में हम जो है एक मिथ के बारे में बात करेंगे. और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ है, बचपन से एक चीज मैं कर रहा हूं जिसके बारे में लोग मुझे टोक रहे हैं, डांट रहे हैं, मगर आज फिट है तो हिट है में ये मिथ मैं ब्रेक करने वाला हूँ. कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ किया होगा जिसे हम नकल क्रैकिंग बोलते हैं. और ये नकल क्रैकिंग से कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आर्थराइटिस हो जाता है, नहीं करना चाहिए.
1: तो बोलते थे कि उंगलियां मोटी हो जाती हैं, लड़कियां अच्छी उंगलियां मोटी होती है तो अच्छी नहीं लगती है.
0: अच्छा.
1: अपनी फेवरेट रिंग नहीं पहन पाओगी, ऐसी बातें करते हैं.
0: क्या यार क्या, मैं अब फैक्ट बताता हूँ आपको. ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है, लेकिन रिसर्च ने नकल क्रैकिंग और आर्थराइटिस के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पाया है अभी तक. तो जब हम अपने फिंगर्स को क्रैक करते हैं तो जो पॉप या क्रैक साउंड आता है वो बोन्स के टकराने की आवाज नहीं होती. साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग ये साउंड जो है जॉइंट के अंदर मौजूद साइनोवियल फ्लूइड में डिसॉल्व्ड गैसेस जैसे नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनने या कोलैप्स होने की वजह से आती है. इस प्रोसेस से जॉइंट को कोई डैमेज नहीं होता. और रिसर्च ने ऐसे लोगों को कंपेयर किया जो सालों तक रेगुलरली नकल्स क्रैक करते हैं और जो नहीं करते हैं, और रिजल्ट में आर्थराइटिस का कोई रिस्क इन्हें सिग्निफिकेंटली नहीं मिला है, कोई डिफरेंस इन्हें नहीं मिला है. हाँ, बट एक चीज ध्यान देने लायक है, एक्सेसिव या फोर्सफुल क्रैकिंग से टेम्पररी इरिटेशन हो सकती है, और क्रैकिंग के साथ पेन, स्वेलिंग या स्टिफनेस हो तो वो किसी अंडरलाइंग जॉइंट इशू का साइन हो सकता है. तो मोटी मोटी बात यह है कि ऐसे नकल क्रैक्स करने से आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि गैस बबल्स के पॉप होने का साउंड है वो. बट अगर उसके साथ आप पेन आप एक्सपीरियंस करते हैं, फिर कोई और इनकन्वीनियंस एक्सपीरियंस करते हैं, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा गाना प्ले करते हुए कहते हैं
1: जियो बिंदास.
2: That's right. Pump it up.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बिन उमरान. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बिन उमरान. वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे भाई एक बहुत ही बढ़िया अपडेट जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं। और कतर के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने गर्मियों में वर्कर्स को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दिया है। ये कैंपेन जो है 1 जून से 15 सितंबर तक लागू होने वाला है और मिनिस्ट्रियल डिसीजन नंबर 17 of 2021 के तहत जो है ये चलाया जा रहा है। नियम के मुताबिक सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुली जगहों और बिना वेंटिलेशन वाले शेडेड साइट्स पर काम करना मना है। इस दौरान वर्कर्स को तेज गर्मी और धूप से बचाया जाएगा और काम शाम में फिर से शुरू होगा। लेबर मिनिस्ट्री ने एम्प्लॉयर्स को यह निर्देश दिया है कि डेली वर्क शेड्यूल्स तैयार करके वर्कर्स के लिए साफ तौर पर डिस्प्ले करें ताकि नियमों का पालन और वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। क्या बात है, मतलब इतनी हिंदी तो मैंने अपने 8वीं क्लास के एग्जाम में भी नहीं लिखा था। क्या मतलब क्या बताऊं,
1: क्या तो बात कर दिया आपने। वैसे इस कैंपेन में ना कई गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी शामिल हो रहे हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे रेस्टोरेंट्स की अगर मैं बात करूं सो वो भी काफी पॉजिटिवली इस रूल को जो है ले रहे हैं। क्योंकि मैंने कल ही जो है जैसे ही नाश्ता मंगाने के लिए, लंच मंगाने के लिए जो है कॉल किया, जहाँ से हम मंगाते हैं जिस रेस्टोरेंट से, उन्होंने बोला कि मैडम 3:30 बजे के 4 बजे के बाद रायदर जो है वो डिलीवरी होगी क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। एंड लाइक मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं नहीं यार आप मुझे भेजवा दो ऐसा कुछ कर दो, बट इट वाज नाइस।
0: ये ऐसे छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं वो सही में एम्प्लॉय मोरल भी बढ़ाते हैं। साथ ही साथ देखिए काइंड होना बिल्कुल भी ओवररेटेड नहीं है,
1: बिल्कुल नहीं है।
0: और जब वो प्रशासन से आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026.

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में यारिया मूवी का गाना हमने सुना, लव मी थोड़ा और। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी क्रिकेट पगलू।
0: अरे वाह, क्या बात कर दिया आपने। जो आपने अपने आप को एक वो टाइटल दिया है,
1: यस, क्रिकेट पगलू,
0: क्या बात है सीबी। और सीबी क्या हाल है सीबी?
1: I'm good.
0: देखिए, हम दिल्ली वालों के लिए तो सीपी यानी कनॉट प्लेस, सॉरी। ऐसे कनॉट प्लेस गए हो आप
1: क्या? नहीं, मैं दिल्ली सिर्फ दो बार गई हूँ, एक बार कतर के वीजा के लिए और एक बार एक मीटिंग में गई थी मैं, पर वहां सिर्फ मैं फिल्म सिटी होकर आ गई।
0: अच्छा, मगर आप कनॉट प्लेस नहीं गए?
1: नहीं,
0: कनॉट प्लेस तो काफी आइकॉनिक जगह है।
1: कनॉट प्लेस तो यार देखो, मुझे जाना है, मैंने शाहरुख खान की फेवरेट कोल्ड कॉफी वहां पे मिलती है, आई थिंक ये सुना है।
0: अच्छा,
1: मुझे वहां जाना है।
0: वैसे कनॉट प्लेस में अगर आप जाओगे तो वहां पे जो रीगल बिल्डिंग्स हैं उनमें मेरे फ्रेंड का स्प्रे पेंट आप देख सकते हैं।
1: ये कैसे, मतलब अपना कहीं ना कहीं से
0: नहीं, मैं
1: तारीफ घुसा ही देते हैं कॉन्वर्सेशन
0: इसमें। मेरी तारीफ क्या है, उसकी तारीफ है
1: कि मैं ऐसे लोगों से के साथ जो है दोस्त हूँ जो ऐसे अमेजिंग काम करते हैं।
0: एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था ये। मैं एक बार, एक जमाना था जब हम प्यार में थे और हम अपने प्रेमिका के साथ कनॉट प्लेस के रीगल बिल्डिंग की गलियों से चल रहे थे, भटक रहे थे, इधर उधर चल रहे थे, तो मैंने काफी जाना पहचाना सा एक पैटर्न देखा। तो मैंने देखा ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, तो फिर मैंने फोटो खींच के अपने दोस्त को भेजा, मैंने तू यहाँ आया था क्या? उसने बोला हाँ भाई, वहाँ के बहुत सारे पिलर्स में तुझे मिलेगा। तो कनॉट प्लेस एक आइकॉनिक जगह है ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस, अब ये भी बन चुका है। बट या हम बात करते हैं क्रिकेट की,
1: और अगेन क्रिकेट की, सो अमेजिंग T20 लीग खेलने के बाद अब जो है बारी आ गई है टेस्ट की।
0: जी,
1: टेस्ट की, हमारे पेशेंस की टेस्ट की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें मेरा तो पर्सनली बहुत पेशेंस जो है वो टेस्ट हो जाता है।
0: जी बिल्कुल, तो इसलिए टेस्ट को टेस्ट ही बोलते हैं, प्लेयर्स का भी जो है पेशेंस वहां पे टेस्ट किया जाता है। और इंडिया का जो टेस्ट सीरीज है अफगानिस्तान के साथ, उसके लिए स्क्वाड जो है,
1: उसके लिए स्क्वाड बिल्कुल रेडी है। एंड चाहे हम ओडीआई की बात करें या चाहे हम अभी टेस्ट की बात करें, दोनों में कैप्टनसी जो है वो शुभमन गिल को संभालने के लिए दे दी गई है।
0: ओके,
1: एंड ओडीआई में खैर रोहित एंड कोहली दोनों खेल रहे हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन टेस्ट की बात पहले कर लेते हैं। तो वाइस कैप्टनसी में जो है ऋषभ पंत से वाइस कैप्टनसी लेकर अब केएल राहुल को जो है दे दी गई है। एंड मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बढ़िया वाला डिसीजन दिया है, क्योंकि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि यार, सी नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम शुभमन गिल, बगर कैप्टनसी के मामले में थोड़ा और मुझे लगता है इंडियन टीम वो कर सकती है। श्रेयस अय्यर जो है मुझे एक बहुत ही अच्छा कैप्टन मटेरियल लगता है। ऑब्वियसली मे नॉट बी परफेक्ट, बट स्टिल यू शुड ट्राई, क्या पता हो सकता है अच्छा एक वो।
1: अलग अलग जो हमारी सीरीज हो रही है उनमें अगर हम कैप्टन को ऐसे ट्राई करें तो मुझे ऐसा लगता है सबका मोराल जो है वो बढ़ेगा, एंड हमें भी पता चलेगा कि कौन किसकी कैप्टनसी में जो है हम सबसे बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हैं, हमारी स्क्वाड जो है वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ पा रही है। सो लुकिंग फॉरवर्ड, शुभमन गिल को भी मुझे ऐसा लगता है कि उतना मौका मिला है, पर शायद ये वाला मौका हो सकता है जिसमें वो और ज्यादा शाइन कर जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली शुभमन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर उन्होंने अपने आप को एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर प्रूफ कर दिया, तो लंबे समय तक, लंबे अरसे तक जो है वो अपना एक स्पॉट सीमेंटिफाई कर सकते हैं टीम में। और यही बात बोलते हुए काम करते हैं, धीरे धीरे जरा आगे बढ़ते हैं, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हैं और कहते हैं
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: Presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया बात जो है आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, कतर फुटबॉल टीम ने अपने फीफा वर्ल्ड कप के लिए फाइनल टीम को जो है अनाउंस कर दिया है और कोच जुलेन ने जो है 26 खिलाड़ियों के स्क्वाड को चुना है, जबकि गोलकीपर शहाब इलेती और डिफेंडर रायन अल अली को फाइनल स्क्वाड से बाहर रखा गया है। ठीक है, कतर की टीम अब अमेरिका के कैलिफोर्निया में ट्रेनिंग कर रही है और वर्ल्ड कप की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। कुछ ज्यादा ही काव्यात्मक हिंदी की ओर हम जो है कदम बढ़ा रहे हैं।
1: क्या खा कर आए थे आज?
0: वो पंकज त्रिपाठी के थोड़े वीडियोस देखे थे हमने और सौरभ द्विवेदी के भी।
1: हाँ,
0: उनके एक्टिंग के चर्चे हो रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़े लल्लन टाइप के वीडियोस देखे जाए, तो देखे हमने, अच्छा लगा हमें।
1: अच्छा लगा ना?
0: बिल्कुल अच्छा।
1: हाँ, भी हिंदी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है आपसे।
0: बिल्कुल,
1: आप
0: बिल्कुल।
1: बहुत अच्छे लगते हैं हिंदी में बात करते हुए।
0: जी, यही मेरी टीचर भी।
1: बात करते हैं, हमारी फालतू में बेइज्जती नहीं करते हैं।
0: हाँ,
1: इसलिए
0: ये हमारी टीचर भी यही हमसे कहा करती थी कि हमें लगता नहीं है कि आप साउथ इंडिया से हैं, आप इतनी साफ और शुद्ध हिंदी बोलते हैं। हमने बोला कि जी हाँ, हम पले बड़े दिल्ली में ही हैं तो इसलिए ऐसा होता है। बट कोई बात नहीं, बाकी बात हम करते हैं। कतर की टीम जो है कैलिफोर्निया पहुंच चुकी है, ट्रेनिंग जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है और ये कतर का लगातार जो है कंसेक्यूटिवली सेकेंड वर्ल्ड कप अपीयरेंस होगा और पहला ऑन मेरिट अपीयरेंस होगा, क्योंकि पिछले बार वो लोग होस्ट थे तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इस बार क्वालिफाई करके जो है वो अमेरिका पहुंच चुके हैं और ग्रुप बी में कतर का पहला मैच स्विट्जरलैंड के खिलाफ जून 13 को होने वाला है और उसके बाद टीम जो है कनाडा से 18 जून और बोस्निया एंड हर्जेगोविना से 24 जून को भिड़ेगी। ठीक है, टूर्नामेंट से पहले कतर 6 जून को एल साल्वाडोर के साथ एक वार्म अप मैच भी खेलने वाली है। तो ऑल द बेस्ट टू द कतरी फुटबॉल टीम और यही बात बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और एक स्पेशल गाना प्ले करना चाहेंगे हम। ये स्पेशल गाना एक स्पेशल स्टार के लिए है जो काफी वर्सेटाइल है, काफी टैलेंटेड है और मैं बता दूं कि ये टैलेंट कोई इत्तेफाक नहीं है। रज्जू से लेके अकीरा तक ये है दबंग।
2: रज्जू हो या अकीरा, हर कैरेक्टर में ये दबंग है।
3: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।
2: और इनका हमारे दिलों को लूटना कोई इत्तेफाक नहीं,
4: जादू तेरा मुझ पे चल गया।
2: क्योंकि नाम है इनका सोनाक्षी सिन्हा। हैप्पी बर्थडे टू सोनाक्षी सिन्हा। लिसन टू सोनाक्षी स्पेशल सॉन्ग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: Olive Bay. Story of the day.
1: Story of the day.
2: उन्होंने एक बार कहा था, A film should make you feel, not explain everything. और शायद इसीलिए उनकी फिल्में देखी कम, महसूस ज्यादा की जाती हैं। रोजा हो, बॉम्बे हो, दिल से हो या फिर पोनियन सेल्वन, हर दौर में उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, सिनेमा को एक नया एक्सेंट दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मणि रत्नम के कैरेक्टर्स अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी डायलॉग बन जाती है। और जब बाकी डायरेक्टर्स ऑडियंस को स्टोरी सुनाते हैं, मणि रत्नम ऑडियंस को स्टोरी के अंदर ले जाते हैं, जिसने बारिश को रोमांस बना दिया, खामोशी को कॉन्वर्सेशन बना दिया और सिनेमा को पोएट्री बना दिया। हैप्पी बर्थडे टू द मास्टर ऑफ मोमेंट्स।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास
5: मॉर्निंग, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. What?

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे
1: आपकी कशिश गाइस.
0: मैं वही बोलने वाला था, यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत ही बढ़िया मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव और यहाँ पे मेरे समक्ष एक बहुत ही खूबसूरत महिला बैठी है जो अपनी मुस्कुराहट से हम सब के दिल में जो है बहुत ही रोशनी बिखेर देती है. तनीषा आगे तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, इतनी रोशनी कैसे हम हैंडल कर पाते हैं. मैंने सुना है कि नासा वाले बोल रहे थे कि सन में जो है ना, सन के सर्विस में कुछ ब्लैक स्पॉट्स आ गए. तो वो रिसर्च कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ. फिर मैंने मेल भेजा, वो तनीषा बाहर निकली थी कल दोपहर के टाइम पे, तो उस पोर्शन में टैनिंग हो गई है सन को.
1: अच्छा अच्छा,
0: ये है रीजन.
1: ये बात सही बात है.
0: ये भाई वो मेरे से कहती कि मैं बाहर निकलूंगी तो मैं टैन हो जाऊंगी. मैं ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सन विल गेट टैंड. बट या यहाँ पे हम एक बहुत ही बढ़िया बात जो है आपको टेक जोन में बताना चाहेंगे. गूगल ने अपने पिक्सल वॉच 5 को अनाउंस भी नहीं किया है, ठीक है, पर वो मिला. वो कहीं पे मिला, पता है कहाँ मिला? ओशन फ्लोर में. कैरिबियन आइलैंड ऑफ सेंट मार्टिन में जो है ओशन फ्लोर में एक ऐसे ही बंदा घूम रहा था, डाइवर घूम रहा था. तो उसने वहां पे ओशन फ्लोर में एक अनयूजुअल सा गैजेट देखा. और वो गैजेट जब देखा, पता चला कि ये गूगल का रिलीज होने वाला पिक्सल वॉच 5 है. तो ये लीक का जो सोर्स है वो है गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर के फाउंडर रैंडी पिचफोर्ड, ठीक है. और अनरिलीज्ड पिक्सल वॉच 5 जो है उनके पोजेशन में था. और बट क्या कहते हैं, ये कहीं ना कहीं उनसे डीप वाटर में चला गया था, अंडर वाटर में चला गया था. और उस टाइम पे इट वॉज ओनली एबल टू डिस्प्ले करेक्ट टाइम ऑन वॉट अपीयर टू बी रिजर्व चार्ज. तो रिलीज होने के पहले ही अनरिलीज्ड मॉडल किसी को दिया गया था यूज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उनसे वो गुम हो गया.
1: क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो है सही बात है कि गुम हो गया होगा? मुझे तो ऐसा लगता है प्रमोशन का एक तरीका है.
0: देखिए
1: यार, देखो ओशन में मिला है, इतने टाइम बाद मिला है, फिर भी बढ़िया है. लोगों को ऐसे अचंभा हो रहा होगा कि
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तरीका हो सकता है. क्योंकि देखो पीआर के लिए दुनिया पागल है आजकल. बिल्कुल पागल है,
1: पीआर के लिए और पीआर के लिए दोनों के लिए पागल है. एंड दोनों ही गूगल को बहुत ज्यादा मिले, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ऐसा किया है. एंड अच्छा हुआ ये फॉरेन में मिला है, हमारे इंडिया में नहीं मिला, अच्छी बात है. क्योंकि इंडिया में तो ऑलरेडी 6, 7, 8, 9, 10 आ चुकी है उसका वर्जन. और आप कहीं पे जाओ
0: लोग बोले यार ये तो पुराना है.
1: कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो बोलता है, शुरुआत वो करता है कि 6000 की एयरपॉड जाए, वो बोलता है 500, वो बोलता है 600, बोला 50 फिर ले जाओ.
0: ये मेरे साथ एक्चुअली हुआ है. मैं सरोजनी नगर गया था. और सरोजनी नगर अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ गया था.
1: लेकर आए थे ना?
0: हाँ भाई, वो बहुत ही था. बट उसके बाद अलग से मैं गया, अपने ले गया. वहां पे मैं ड्रेस लेने के लिए आया था, बट वहां पे भैया ने कम नहीं किया.
1: वो आजकल एक वीडियो बहुत चल रही है ना कि किसी भी मार्केट से कोई भी सामान लेकर आते, मिक्सर लेकर आए, उसको जैसे चालू करो उससे गाने बजने लगते हैं.
0: हाँ वही हालत हो रही है. और मैं वहां पे ड्रेस लेने गया था, भैया काम नहीं कर रहे थे. फिर मैंने अपने हाथ में जो वज्रायुध था मेरे पास, उसका मैंने इस्तेमाल किया. मैं थोड़ा दूर चला गया, मैंने अपनी बंदी को बोला जाके वो ड्रेस लेके आया था, थोड़ा बार्गेन करके. वो बार्गेन करके लेकर आई. मैं बोला अगर भैया मुझे बार्गेन रेट में नहीं दे रहे तो मुझे आपसे रेट निकलवाना आता है. हम भी कम है क्या?
1: ये बात तो देखो सही.
0: बट या एनी वे, अगर आप
1: ये रिलीज कब हो रही है, कुछ आइडिया है?
0: ये नहीं, कुछ अभी डेट तो उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया है, बट ये खबर आई थी तो मैंने सोचा मैं बता दूं. फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा गाना आपके लिए प्ले करना चाहेंगे, ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर में. स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम.
1: जियो बिंदास.
0: यस, और यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, थोड़ी देर में जब हम वापस आएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके लिए लेकर आएंगे और एक सवाल लेकर आएंगे. सवाल के लिए तैयार हो जाइए, देखते हैं कि आप कितना ज्यादा जानते हैं फुटबॉल के बारे में.
2: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Ye gana

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे जो है फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे। देखिए फुटबॉल फीवर जो है पूरे पूरे दुनिया में जो है अब
1: छाया हुआ है। रात भर जाग जा के जो है कोशिश कर रहे हैं कि
0: जो है तैयारी करें,
1: देख पाए, तैयारी कर पाए,
0: क्योंकि फुटबॉल टूर्नामेंट जो है फीफा वर्ल्ड कप जो है शुरू होने वाला है। कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। थोड़ी देर पहले हमने कतर की टीम के बारे में बात की थी और यहाँ पे हम एक ट्रिविया जो है शेयर करना चाहेंगे एक सवाल के माध्यम से। एक सवाल हम पूछेंगे, उसका जवाब आप दीजिए
1: सवाल के माध्यम से।
0: अच्छा लगा ना
1: वो
0: पुस्तक याद आ गई। क्या बात कर दिया आपने, इतनी
1: शुद्ध
0: हिंदी में। वैसे शुद्ध से मुझे याद आया कि जावेद अख्तर साहब एक बार बता रहे थे कि भाषा शुद्ध रखने की कोशिश करोगे तो भाषा खत्म हो जाएगी। भाषा तभी सर्वाइव करती है जब उसमें और भी चीजें ऐड होती हैं। तो उसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल कल यहाँ पे हमारे अरबिक टीम में से किसी ने कुछ ऐसे बैठने के लिए कुर्सी बोला, तो एकदम से हमारी टीम की लड़की बोली कुर्सी तो हिंदी में होता है ना, बट कुर्सी एक्चुअली अरबिक वर्ड है जो आया है हिंदी में। तो कुर्सी हिंदी में, कुर्सी करके कोई वर्ड नहीं, वो आया है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हिंदी में हो, मलयालम में हो, इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस में डिफरेंट लैंग्वेजेस का जो है इन्फ्लुएंस है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में हिंदी का या फिर इंडियन लैंग्वेजेस का बहुत वो है। बंगलो, हिंदी में बंगला बोलते हैं, इंग्लिश में बंगलो वर्ड यहाँ से गया है।
1: ओ, मुझे लगा कि इंग्लिश में बंगलो है इस वजह से हम बंगला बोलते हैं।
0: नहीं, और सिमिलरली लूट जो है यहाँ से गया है, शैम्पू यहाँ से गया है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स। तो भाषा कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। भाषा तभी सर्वाइव करती है जब वो और चीजों से मिलती है,
1: से मिक्स होकर उभरती है।
0: एग्जैक्टली
1: yes.
0: और यहाँ पे हमने फुटबॉल से शुरू की थी बात,
1: yes.
0: हम भाषा में चले गए, वापस फुटबॉल में आते हैं। तो सवाल ये है कि हु हैज द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल स्कोर्ड इन अ सिंगल वर्ल्ड कप मैच। एक ही वर्ल्ड कप मैच में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले प्लेयर का नाम क्या है, ये आपको बताना है हमें तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले, अभी के अभी। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 4441063 पर, हमें बता सकते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। फिलहाल यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: देखिए मूवी का नाम है दुल्हन हम ले जाएंगे।
1: ले जाएंगे मिले तो सही।
0: बिल्कुल ले जाएंगे, मगर कोई मान तो जाए तभी तो ले जाएंगे। देखिए कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: yes.
0: और जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि इस नाम मूवी का नाम रखा गया, इसमें कोई कंसेंट नहीं था। कंसेंट यहाँ था ही नहीं। मैं गाना सुन के बता सकता हूँ कि यहाँ पे कंसेंट नहीं लिया गया था।
1: yes.
0: ये काफी टॉक्सिसिटी के साथ जो है
1: yes.
0: इसमें एक्ट किया गया था। बट हम क्या कहते हैं, बुरा नहीं बोल सकते
1: क्योंकि
0: बनाई
1: है ना मूवी
0: इसलिए। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, मिलेनियल्स तो किसी को देख के तो इंस्पायर हुए होंगे ना। तो वही उन्हें पता है कि आने वाले।
1: ये बात सही है। ये सही है, ये सबसे बेस्ट चीज है। जेंजीज मिलेनियल्स पर डालते हैं, मिलेनियल्स बूमर्स पर डाल देते हैं। सबसे बेस्ट चीज चल रही है,
0: मगर घूम फिर के सब जेंजी को ही
1: का टारगेट तो देखो हम ही होने हैं।
0: बट मुझे लगता है कि हर जनरेशन, हर नए जनरेशन को जो है वो ब्रंट सहना पड़ता है और वो एक हिट जो है लेना पड़ता है। बट यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जनरेशन टू जनरेशन हमें लगता है कि हम बहुत अलग है, नहीं है,
1: नहीं है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है ये, इस एज ग्रुप में लोग सेम ही होते हैं,
0: सेम ही होते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं 22 साल का था तो जो मेरी सोच थी वो नहीं है 28 साल में। 6 साल का गैप आया है बीच में। इस 6 साल के अंदर वो फ्रंटल लोब नाम की चीज होती है इंसान में, वो थोड़ा ना डेवलप हो जाता है।
1: अच्छा, ये क्या होता है?
0: वो भी आपका हो रहा है, टेंशन मत लो। ब्रेन का एक हिस्सा होता है फ्रंटल लोब करके, ठीक है, वो थोड़ा तैयार होता है तो अब मैच्योरिटी आती है, चीजों को देखने का एक तरीका जो बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है। तो ये विथ एज एंड विथ एक्सपीरियंस आता है और उसके लिए यू हैव टू बी ओपन। तो मुझे एक मेरे मेंटर ने एक सलाह दी थी, उन्होंने बोला था कि कभी भी अपने आप को रिजिड मत बनाना, ऑलवेज बी ओपन। तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि उस टाइम पे मैं नया नया जॉब में जा ही रहा था। तो बोले कि हमें ये बात तुम ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज को सख्त मना नहीं करना है, कभी भी किसी चीज के लिए सख्त बाउंड्री नहीं बनानी है। मतलब कुछ चीजों किसी मैं फंबल कर गया यार, किसी किसी चीजों में बनानी है मगर Certain things को तुम flexible
1: रखना। Open to change रहना है कि वक्त के साथ हम बदलेंगे नहीं,
0: यही,
1: तो वक्त हमें बदल
0: क्या
1: देगा।
0: बात कर दी, यही तो yes, संसार का सबसे बड़ा सत्य है।
1: सत्य है कि अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो वक्त आपको बदल देगा।
0: बिल्कुल,
1: आपकी जगह जो चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। हमने ये बात कुछ दिन पहले भी की थी कि साइंस में भी यही होता है कि जो फिट कर जाता है वो सर्वाइव कर जाता है, और वरना आप अपने रूल्स में बंधे रहिए, अपनी सोच में बंधे रहिए, आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे।
0: क्या बात कर दी आप, इतनी बड़ी भारी बात आपने इस छोटे उम्र में कैसे संभाल ली।
1: बस मैं ऐसे ही संभाल लेती हूँ। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ना पूछे आप मुझसे, मोरल साइंस पूरा पूछ
0: क्या
1: सकते हैं।
0: बात कर दी।
1: जो जनरल नॉलेज आपने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, देखिए मुझे पता है पर मुझे कंफर्म नहीं है कि मुझे।
0: अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। yes. जिन लोगों ने भी जवाब भेजा है थोड़ा गलत आया है, कुछ लोग के सही आए हैं। और एक्चुअली आंसर है ओलेग सालेन्को, जो रशिया के प्लेयर है। इन्होंने कैमरून के खिलाफ जो है 5 गोल मारे थे और बहुत ही बढ़िया एक गेम रहा था वो, काफी डोमिनेटिंग गेम था रशिया के साइड से। तो यही बात बताते हुए फिलहाल एक काम करते हैं, हम जरा आगे बढ़ते हैं और जबरदस्त हिट प्ले करते हैं।
1: yes.
0: और कहते हैं जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त हिट।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे जो है कशिशवा मैडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातवा हमसे
1: बातवा हम जो है शेरवा कर रहे हैं कि हम जो है कल समरवा स्प्लैशवा में गए थे।
0: क्या बात कर रहे हैं, वाह, गजब की बात कर दी।
1: कि इतनी गर्मी में हम सोच रहे थे कि इतनी गर्मी हो रही है तो ऐसे ऐसे लोगों के पास बैठ के क्या फायदा जो सिर्फ फोन चलाते रहते हैं पूरे टाइम, उनसे बातचीत भी नहीं करते हैं।
0: क्या बात कर रहे हैं, कौन है ऐसे लोग?
1: आप
0: कौन? आप
1: अभी
0: ये आप कोई नाम रखता है क्या?
1: अभी भी जो है ये फोन चला रहे हैं।
0: क्या बात कर रहे हैं, ये आप कौन है मुझे बताइए?
1: आप है, देखिए हम बड़ों का नाम नहीं लेते।
0: आप कौन है, ये कौन आप नाम रखता है?
1: आप सुदेव, आप
0: आप सुदेव आप कौन है? अच्छा मैं
1: हो गया ठीक है। तो मैं बता रही थी कि देखिए यार, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार कि क्या किया जाए, इतनी गर्मी हो रही है,
0: जी जी,
1: बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा,
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: बीच पे हम जा नहीं सकते क्योंकि रेत इतनी गर्म गर्म हो रही है, एंड जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इतनी स्पीड से गर्म गर्म हवा चल रही है, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई मुंह पे जो है हेयर ड्रायर मार रहा है। सो इन सब चीजों के बीच में मैंने जो है एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली है जहाँ पे मैं कल गई थी, एंड मेरा एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा था। पहले मुझे लग रहा था कि यार इतनी गर्मी है, आउटडोर में अगर ये इवेंट होगा तो मैं कैसे जाऊंगी, बट सिर्फ समर स्प्लैश जो है वो नाम है इवेंट का। आप जैसे ही एक बड़ा सा डोम है उस डोम के अंदर जाते हैं तो ऐसे ही आपके बचपन जो है ऐसे रीलोड हो जाता है, क्योंकि निकलोडियन जो हम सब ने देखा है, स्पंजबॉब देखते देखते
0: आपने भी देखा निकलोडियन?
1: या कॉस एंड स्पंजबॉब देखते देखते हम बड़े हुए हैं। पॉ पेट्रोल जो है वो मैं अभी तक देखती हूँ। सो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको लाइवली देखने का मौका मिलता है, एंड अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले। बहुत सारी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज है। विजिट कतर ने जो है, कतर कैलेंडर ने जो है ये इवेंट किया है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बेस्ट बात ये है तो आपके समर को और ज्यादा स्पेशल आप यहाँ जाकर बना सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल कल मैं इस वाले इवेंट पे गई थी। तो 30th जून तक आप भी इस इवेंट में जा सकते हैं, तो अगर आप भी जाएं तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको जो ग्लिम्स है कि मैं क्या कैसे गई थी, क्या कुछ मैंने फन किया, वो सब देखने को मिल जाएगा। सो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल।
0: बिल्कुल, और यही बात बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। और उसके पहले एक चीज याद दिला दूं, जैसे ही आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रहे हो, वैसे एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, वो ये है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो भी इंडिया में है, पाकिस्तान में या फिर वर्ल्ड में कहीं पे भी हैं, उनको भी आप हमारे इस जर्नी में हमारे साथ लेकर आ सकते हैं। क्या करना है, उनको बताना है कि ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आप रेडियो ऑलिव का ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि वो वर्ल्ड में कहीं पे भी हो हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। जावेद अली, रेखा भारद्वाज और अनुराधा की आवाज में सुनते हैं रावण मूवी का गाना। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: जी बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर ये एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
6: Rani, dekh Raja ye matki ek fatki mein todta hai.

जब ये गाना आया था ना, सच में इंस्टाग्राम से लेके टिकटॉक तक हर जगह लोग सिर्फ यही स्टेप कर रहे थे. आपको याद है या नहीं है, और आपने किया है या नहीं किया है? बैक है जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त 9:48 हो रहा है, यानी वक्त हो गया है हमारे आपको टाटा बाय बाय बोलने का. अब देखो यार, क्या होता है ना कि जो इंसान आता है उसको थोड़ा जाना पड़ता है ताकि वो कल लौट कर आ पाए. तो बस कल मुलाकात होगी आपसे सेम टाइम सेम जगह पर. फिलहाल मुस्कान जो है आपसे मुस्कुराते हुए मुलाकात करने के लिए आने वाली है. सो जैसे सुदेव कहते हैं कि जितना प्यार आपने हमें दिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुस्कान को दीजिएगा एंड एक खुली बाहों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा. बाकी मैं जैसे कहती हूँ कि आप मुझे मिस करते रहिएगा, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, खाने का ध्यान रखिएगा, और इस चिलचिल आती हुई गर्मी में ना हाइड्रेटेड रहिएगा, पानी पीने का बिल्कुल ध्यान रखिएगा. फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. यार मतलब ये ना इस वक्त मेरा फेवरेट गाना बना हुआ है, मतलब फेवरेट फेवरेट फेवरेट. एंड इंस्टाग्राम पे जिस हिसाब से ये गाना वायरल हो रहा है ना, मतलब नेक्स्ट तुम ही हो जो गाना है ना, वो मुझे लगता है यही बनने वाला है. सो आप भी ये गाना जो है इंजॉय करो, और आप हमें बता सकते हो कि यार ये गाना आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या ऐसे और कोई गाना है जो अभी आपकी प्लेलिस्ट में जगह बना चुका है, सो वो भी आप मुझे बता सकते हैं. फिलहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: Olive Short Break.
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
4: This hour is brought to you by
5: Homes R Us. We complete your home.

0: गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस लाइफ मस्त है. कभी आपने नोटिस किया है कि हर सुबह जब हम उठते हैं तो सेम घर होता है, सेम सिटी होती है, सेम ऑफिस जाना होता है, लेकिन फिर भी हर दिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है. लाइफ की ब्यूटी भी यही है. किसी को प्रमोशन की ईमेल मिल सकती है, किसी को स्कॉलरशिप, किसी को नई अपॉर्चुनिटी, और किसी को बस एक अच्छी कप चाय मिल जाए तो भी दिन बन जाता है. ऐसे ही ना, हर किसी के दिन में हर दिन कुछ नया और अच्छा होता है. सो आज के शो में बात होगी एजुकेशन की, फुटबॉल की, फैशन की, हेल्थ की और ऑफकोर्स किताबों की. उसे तो मैं भूल ही नहीं सकती ना. सो लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स की जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते, कॉलेज में नहीं सिखाए जाते, जो आपको खुद सीखने पड़ते हैं. तो रेडी हो जाइए और यहाँ पर हम शुरू करते हैं लाइफ मस्त है, जहाँ पर आई हैव लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल गाने हैं. और इस टाइम पर आपको पता है कि बड़ा मिक्स एंड मैच गाने चलते हैं, कभी नए कभी पुराने, और एकदम से वाइब चेंज हो जाता है सारा. सो स्टूडियो में बैठ के मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, और आप भी मुझे बताइए कि इस टाइम पर आप ड्राइव करते करते कहाँ जा रहे हैं, या मीटिंग में, या फिर यू नो थोड़ा सा ब्रेक लेकर कहीं बाहर निकले हैं, या फिर कोई यू नो इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए आप सोच रहे थे बहुत टाइम से कि यार आज तो इसे निपटाना ही है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो Olive, stay tuned, Gio, Bindas.
1: रज्जो हो या अकीरा, हर कैरेक्टर में ये दबंग है.
2: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है.
1: और इनका हमारे दिलों को लूटना कोई इत्तेफाक नहीं,
3: जादू तेरा मुझ पे चल गया.
1: क्योंकि नाम है इनका सोनाक्षी सिन्हा. हैप्पी बर्थडे टू सोनाक्षी सिन्हा. लिसन टू सोनाक्षी स्पेशल सॉन्ग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: कभी कभी एक स्कॉलरशिप पूरी जिंदगी के डायरेक्शन को बदल देती है। और कतर के जो प्रिंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है 2026-27 ऑफिशियली ओपन हो रहा है 1st of July से। सो टुडे इज 2nd of June, आपके पास अभी भी ऑलमोस्ट पूरा एक महीना है, अपॉर्चुनिटी है। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। अब इसके लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को कतर और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिलेगा एंड प्रोग्राम में दुनिया की टॉप 24 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन सिटी की टॉप इंस्टीट्यूशंस सब इंक्लूडेड हैं और बेनिफिट्स भी बहुत इंप्रेसिव हैं। मतलब 8,000 कतरी रियाल मंथली स्टाइपेंड है, ट्रैवल अलाउंसेस है, बिजनेस क्लास टिकट्स हैं और स्टडी ईयर सर्विस ईयर में काउंट भी होने वाली है। लेकिन मुझे इस न्यूज़ की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, कि टैलेंट को सपोर्ट मिलना, क्योंकि कभी कभी ड्रीम्स ना बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, और स्कॉलरशिप उन ड्रीम्स को पॉसिबल बना देती है। मतलब हमेशा से ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहो तो यू कैन डू एनीथिंग यार। सो क्वेश्चन ये है, अगर आपको दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ने को चांस मिले तो आप किस सब्जेक्ट को चूज करने वाले हो? 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Geo Bindas. Cool
1: song. Radio Olive par aane wala gana. Cool song of the hour.
2: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Cool song.

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

सो वीकेंड पर बीमार पड़ना भी प्लानिंग करके नहीं होता, इसीलिए PHCC ने अलवाब हेल्थ सेंटर को वीकेंड सर्विस नेटवर्क में इंक्लूड कर दिया है। सो बेसिकली अब वीकेंड ऑपरेटिंग हेल्थ सेंटर्स की नंबर 22 हो गई है। और ऑनेस्टली ये एक यू नो प्रैक्टिकल चेंज है, क्योंकि इलनेस कैलेंडर देखकर तो आती नहीं है, उसे तो नहीं पता कि ये वीकेंड है, तो बीमारी तो भाई कभी भी आ सकती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। अब सैटरडे हो या फ्राइडे हो, हेल्थ इशू कभी भी आ सकता है ना। सो PHCC का अर्जेंट केयर सिस्टम नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज को हैंडल करता है, यानी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स पर प्रेशर कम होता है और पेशेंट्स का जो फास्टर केयर है वो भी यू नो मिल जाता है। सो आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में हेल्थ केयर का जो एक्सेसिबल होना है वो लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन गया है। सो आई विल से कि कतर में जब ऐसे चेंजेस आते हैं, और हो सकता है ये बहुत छोटे चेंजेस हो, पर फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि यार ये छोटे छोटे चेंजेस लाइफ को कितना ईजी बना देते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप तुरंत यू नो सारी चीज़ें जाके चेकआउट कर सकते हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो वीकेंड पर हेल्थ सेंटर का खुलना हो। बाय द वे, थोड़ी देर बाद मैं किताब की बात करने वाली हूँ, जो किताबें आपको स्कूल कॉलेज में तो नहीं पढ़ाई जाती। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। सुंदर रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

Olive Bay. Story of the day. Story of the day. Story of the day. उन्होंने एक बार कहा था, A film should make you feel, not explain everything. और शायद इसीलिए उनकी फिल्में देखी कम महसूस ज्यादा की जाती हैं। रोजा हो, बॉम्बे हो, दिल से हो या फिर पोनियन सेल्वन, हर दौर में उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, सिनेमा को एक नया एक्सेंट दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मणि रत्नम के कैरेक्टर्स अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी डायलॉग बन जाती है। और जब बाकी डायरेक्टर्स ऑडियंस को स्टोरी सुनाते हैं, मणि रत्नम ऑडियंस को स्टोरी के अंदर ले जाते हैं, जिसने बारिश को रोमांस बना दिया, खामोशी को कॉन्वर्सेशन बना दिया और सिनेमा को पोएट्री बना दिया। हैप्पी बर्थडे टू द मास्टर ऑफ मोमेंट्स।

0: दोस्ती, ड्रीम्स और वीडियो गेम्स और एक ब्रिलियंट स्टोरी। मतलब इसकी हेडलाइन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा सुन के कि भाई कितना कुछ है इसमें। सपने भी हैं, दोस्ती भी है और वीडियो गेम्स। अगर आपको पसंद है तो आपको इस किताब में सब कुछ मिल सकता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है एंड द बुक नेम इज टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। बाय द वे, कहावत ये होती है कि भाई कल करे सो आज कर, पर मुझे लगता है ये किताब पढ़ के आपको लगेगा कि कल कितना खूबसूरत है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है बुक इन द फोकस।
1: ओके, बुक इन फोकस विद मुस्कान।
0: सो ये ना रीसेंट ईयर की बिगेस्ट बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स में से एक है। स्टोरी दो दोस्तों की है जो वीडियो गेम्स क्रिएट करते हैं। सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअली बुक जो है वो क्रिएटिविटी, एम्बिशन, दोस्ती, सक्सेस और इन सब के प्राइस के बारे में बात करती है। अब इस बुक को टेक्निकली अगर मैं बात करूँ या टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन इमोशंस को परफेक्ट मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है। और रीडर्स कहते हैं कि ये बुक ख़त्म होने के बाद भी दिमाग में रहती है, आपको बहुत दिन सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप फिक्शन पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो ये एक्सेलेंट चॉइस हो सकता है। किताब का नाम एक बार फिर से बता देती हूँ, विच इज़ टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किताबें आपको हर दिन कुछ सिखाती हैं। मतलब अगर आप एक किताब पढ़ते हो मान लो और आप एक किताब पूरे एक महीने में ख़त्म करते हो आराम आराम से, तो भी आप हर दिन उस किताब में कुछ नया सीखोगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप किताब से सीखते हो अगर आप किताबें पढ़ते हो तो। बाय द वे, आज के टाइम पे OTT प्लेटफॉर्म्स पर इतने ऑप्शंस हैं और हमें लगता है कि यार अगर पढ़ने का मन नहीं है, यू नो, लाइट बंद करके बस कुछ देख के और सोने का प्लान है तो फटाफट से OTT लगा लेते हैं। बट अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है देन गो फॉर दिस बुक। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

सो भाई बहुत बार आपने इसके बारे में सुना होगा और ये एक परफेक्ट थ्योरी है. मतलब आपने कई बार स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, घर में, सब जगह सुना होगा कि लेट देम यार, अगर कोई जाना चाहता है तो लेट देम, अगर कोई जज करना चाहता है तो लेट देम. और ये एक पूरी थ्योरी है, द लेट देम थ्योरी, जो सिखाती है आपको कि बस जाने दीजिए. ठीक है, बहुत ही वायरल थ्योरी है जो जिसका ट्रेंड जो है पॉडकास्ट में, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर हर कोई बोलता है. ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडशिप्स हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, लेट देम. बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल है इसके. अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया, लेट देम भाई. किसी को आप पसंद नहीं हो, लेट देम. ऑफिस में किसी ने क्रेडिट ले लिया, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, बट लेट देम. ठीक है, अब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कम्स फ्रॉम ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स दैट आर एक्चुअली आउटसाइड आर कंट्रोल. आप इसे नहीं कंट्रोल कर सकते. तो थ्योरी बेसिकली कहती क्या है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई आर दे डूइंग दिस, पूछो आप कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई आर दे डूइंग दिस, पूछो आप कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई आर दे डूइंग दिस, पूछो आप कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई आर दे डूइंग दिस, पूछो आप कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई आर दे डूइंग दिस, पूछो आप कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई आर दे डूइंग दिस, पूछो आप कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई आर दे डूइंग दिस, पूछो आप कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई आर दे डूइंग दिस, पूछो आप कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई आर दे डूइंग दिस, पूछो आप कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई आर दे डूइंग दिस, पूछो आप कि व्हाई इज दिस इफेक्टिंग मी सो मच. आप खुद से सवाल पूछो भाई. और फिर आपके लिए एक सवाल है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां आपको लेट देम अप्लाई करना चाहिए. यू नो, जब आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये सिचुएशन पे आई हैव टू डू दिस. यू नो, नंबर है 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

थ्योरी की बात कर रही थी तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और इन मैसेजेस में एक मैसेज था जिसने बात की विल्सन्स लॉ के बारे में. अब बात करते हैं इसकी भी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. भाई आई रियली लाइक ऑल दिस थ्योरीज ना. सो अभी मैं बात करती हूँ, जब ईगो रूम में नहीं होती है ना तो आपको चीज़ें आसान लगती हैं, पर जब ईगो रूम में होती है लर्निंग रूम से बाहर चली जाती है. ठीक है, विल्सन्स का लॉ बहुत ही सिंपल आइडिया भी बना है. अगर कुछ नया सीखना है तो ईगो को साइड पर रखना पड़ेगा. सो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिगनर्स फास्टर्स लर्न करते हैं, क्योंकि मतलब उन्हें सब कुछ सीखने में एम्बैरेसमेंट नहीं होती. लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है हम क्वेश्चन पूछना कम कर देते हैं और वही ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है. सच तो यह है कि स्मार्ट लोग सब कुछ नहीं जानते, स्मार्ट लोग पूछने से नहीं डरते. और मेरा सवाल भी आपसे यही है कि जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं या फिर किसी ये जवाब भाई ये भेजते हैं ये किसी याल भी आ ये जवाब

भाई ट्रेंड को फॉलो करना बहुत कूल है, लेकिन अपनी स्टाइल क्रिएट करना और भी ज्यादा कूल है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। दो दिन पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट करिश्मा कपूर्स यू नो आउटफिट जो 2000s में उन्होंने पहने थे, एंड वो आज तक बहुत ट्रेंडिंग है भाई। मतलब अगर आज भी आप वो वैसे बूट्स पहनोगे, वैसे स्कर्ट्स पहनोगे, वैसे क्रॉप टॉप्स पहनोगे, तो ऐसा लगेगा बहुत ट्रेंडी हो। पर अगर मैं बात करूँ 2026 की, जिसमें अभी हम हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैशन ट्रेंड क्या है, लोग मूव कर रहे हैं अपने यू नो ट्रेंड्स खुद बना रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि मुझे यू नो क्या अच्छा लगेगा, मुझे क्या कंफर्टेबल लगेगा, इंस्टेंट ऑफ इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है। सो फैशन एक्सपर्ट्स इसे पर्सनल स्टाइल एरा बोल रहे हैं, जहां पर कैप्सूल वार्डरोब्स, टाइमलेस पीसेस, कंफर्टेबल क्लोदिंग, और ऑनेस्टली ये ट्रेंड ना काफ़ी सेंसिबल भी है। मुझे लगता है ये सस्टेनेबल है, आपको बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदने पड़ते, आप कंफर्टेबल रहते हो, आप फैशन के हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि फैशन तब बेस्ट लगता है जब आप खुद कंफर्टेबल फील करो, राइट। सो ये सब चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद डिसाइड करनी चाहिए कि आपको क्या बढ़िया लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे ऑफिस में सिर्फ ये पैंट्स और कुछ लूज टी शर्ट्स पहन के जाना है, तो आप आराम से उसे कैरी कर सकते हो एक अच्छे से बैग के साथ, एक अच्छे से हील्स के साथ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार पूरा दिन आई कैन नॉट वेयर दिस यू नो प्रोफेशनल क्लोथ्स, तो आप आराम से अपना जो फैशन ट्रेंड है वो खुद से बना सकते हो। बाय द वे यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो वी विल टॉक अबाउट कि भाई कपड़ों के अलावा हम कौन कौन से ऐसे कूलिंग हर्ब्स हैं जिन्हें अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करके आराम से यू नो दिल को ठंडक दे सकते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

Olive B. Story of the day. Story of the day. Story of the day. उन्होंने एक बार कहा था, A film should make you feel, not explain everything. और शायद इसीलिए उनकी फिल्में देखी कम महसूस ज्यादा की जाती हैं। रोजा हो, बॉम्बे हो, दिल से हो या फिर पोनियन सेल्वन, हर दौर में उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, सिनेमा को एक नया एक्सेंट दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मणि रत्नम के कैरेक्टर्स अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी डायलॉग बन जाती है। और जब बाकी डायरेक्टर्स ऑडियंस को स्टोरी सुनाते हैं, मणि रत्नम ऑडियंस को स्टोरी के अंदर ले जाते हैं, जिसने बारिश को रोमांस बना दिया, खामोशी को कॉन्वर्सेशन बना दिया और सिनेमा को पोएट्री बना दिया। हैप्पी बर्थडे टू द मास्टर ऑफ मोमेंट्स।

0: सो बात करते हैं गर्ल्स समर की। यहाँ पर एसी से पहले किचन काम आता है, राइट? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। अब आप कहोगे कि भाई एसी से पहले किचन कैसे काम आ सकता है, तो यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छे हर्ब्स हैं जो आपको कूलिंग इफेक्ट देते हैं, जैसे कि पुदीना, सौंफ, जीरा। ये सिर्फ मसाले नहीं है भाई, ट्रेडिशनल कूलिंग इन्ग्रीडियंट्स हैं जो अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो आपको ना बहुत ही इंटरनल ठंडक मिलेगी। मतलब कोल्ड ड्रिंक पी के, आइसक्रीम खा के आपको ठंडक नहीं मिलेगी, और वैसे भी उस पर तो टैक्सेस बढ़ गए। सो यहाँ पर सॉफ्ट वाटर जो है वो डाइजेशन सपोर्ट करता है, जीरा वाटर हाइड्रेशन और ब्लोटिंग में हेल्प करता है, पुदीना नेचुरली रिफ्रेशिंग फील देता है, और मतलब इंडिया हो या मिडिल ईस्ट हो, दोनों कल्चर में ये सेंचुरीज से यूज़ हो रहा है, तो आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगा यार, किसी भी सुपर मार्केट में। वैसे तो खरीदने की जरूरत नहीं है, घर में होगा ही। ओवरनाइट सौंफ या फिर जीरा जो है उसको आप वाटर में अगर आप भिगो के रखते हो तो ये आपको सुबह बहुत ही अच्छा फील देने वाला है। और ये फ्रेश मिंट तो मतलब इन्फ्यूज्ड वाटर है, आप आराम से अपने पानी के अंदर इसे बॉटल में भी डाल के रख सकते हो। समर में बॉडी को नेचुरली सपोर्ट करता है ये सब कुछ, तो आप आज से तैयारी कर लीजिए। You are listening Radio Olive. मैं हूँ मुस्कान. Stay tuned, Jio Bindas.
1: Radio Olive पर.
2: Fresh. ये गाना fresh है.
1: Fresh song of the hour.
2: ये गाना.

0: Hence, CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: लोग ना आपको उतना नोटिस नहीं करते जितना आप सोचते हो. साइकोलॉजी में एक टर्म है स्पॉटलाइट इफेक्ट. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. हम सोचते हैं सब लोग हमें जज कर रहे हैं. प्रेजेंटेशन खराब हुई सब याद रखेंगे, ईमेल में कुछ एरर हो गया तो सब नोटिस करेंगे. रियलिटी क्या है, मोस्ट पीपल अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी होते हैं. ठीक है, इवन रिसर्च भी ये शो करती है कि जो ह्यूमंस हैं वो ओवर एस्टिमेट हाउ मच अदर ऑब्जर्व्स देम. मतलब फीडबैक मिलते ही हम डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस को अटैक समझ लेते हैं. क्रिटिसिज्म को हमें लगता है कि ये तो हम झेल ही नहीं पाएंगे, लेकिन ग्रोथ वही होती है जहां फीडबैक को इन्फॉर्मेशन समझा जाए, ना कि प्रॉब्लम. सो क्वेश्चन आपसे है कि ऑफिस स्ट्रेस ज्यादा काम देता है या लोगों की ओपिनियन. ठीक है, ये आपको मुझे बताना है 3311063 पर. और सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. और मुझे ना हमेशा ऐसी चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं खुद एक ओवर थिंक करूँ. मुझे हर चीज़ पर सोचना मतलब मेरी आदत बन चुकी है. पर जब मैं ऐसी थ्योरीज पढ़ती हूँ, जब मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मतलब चीज़ें कंट्रोल तो की जा सकती है क्योंकि बाकी चीज़ों पर कंट्रोल है नहीं. तो एटलीस्ट हमारे दिमाग पर तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं, राइट? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

Welcome back. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान. शो का नाम Yes, Life Must है. So, मुझे ऐसा लगता है कि बोर्डम ना दुश्मन नहीं है, क्रिएटिविटी का कजिन है. और ये बात कैसे, आजकल हम बोर्डम से डरते हैं. फोन उठाओ, रील्स देखो, नोटिफिकेशन चेक करो, सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, राइट? बट न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि बोर्डम ब्रेन को क्रिएटिव थिंकिंग मोड में डाल सकता है. इसीलिए बेस्ट आइडियाज जो हैं वो ऐसे टाइम पर आते हैं जब आप वॉक कर रहे होते हो, या फिर कुछ ऐसा काम जो आपको लगता है कि सबसे बोरिंग है, या फिर रेगुलर वर्क जो होता है. सो क्योंकि ब्रेन को फ्री स्पेस मिल जाता है. जैसे कि आप मेट्रो में बैठे हो, मान लो आप मेट्रो से अगर ट्रैवल करते हो, या कैब में आप ऑफिस जा रहे हो, तब आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है. सो हर सेकेंड एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है, कभी कभी बोर्डम भी प्रोडक्टिव होता है. और ऐसा कहा जाता है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो जल्दी बोर हो जाते हैं. तो अगर आप भी जल्दी बोर हो जाते हो तो आप समझ लो कि आप बहुत स्मार्ट हो. सो आजकल बोर्डम से ज्यादा रेयर चीजें हैं साइलेंस. सो थोड़ी देर शांति अगर मिल रही है तो उसमें बस सोचने की कोशिश कीजिए कि और चीजें जो आप करना चाहते हैं उस टाइम पर, उस पर फोकस कीजिए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

Story of the day. Story of the day. उन्होंने एक बार कहा था, a film should make you feel, not explain everything. और शायद इसीलिए उनकी फिल्में देखी कम महसूस ज्यादा की जाती हैं। रोजा हो, बॉम्बे हो, दिल से हो या फिर पोनियन सेल्वन, हर दौर में उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, सिनेमा को एक नया एक्सेंट दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मणि रत्नम के कैरेक्टर्स अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी डायलॉग बन जाती है। और जब बाकी डायरेक्टर्स ऑडियंस को स्टोरी सुनाते हैं, मणि रत्नम ऑडियंस को स्टोरी के अंदर ले जाते हैं, जिसने बारिश को रोमांस बना दिया, खामोशी को कॉन्वर्सेशन बना दिया और सिनेमा को पोएट्री बना दिया। हैप्पी बर्थडे टू द मास्टर ऑफ मोमेंट्स।

Radio Olive, your happiness frequency. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

हमको क्या चाहिए, सारे आंसर्स ना लाइफ के एक साथ, विच इज वेरी डिफिकल्ट. लाइफ सारे आंसर्स एक साथ नहीं देती. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान. शो का नाम लाइफ मस्त है. स्कूल में चैप्टर के एंड में आंसर्स मिल जाते हैं, लाइफ में नहीं मिलते. कभी पहले क्वेश्चन आता है, कभी सालों बाद आंसर मिलता है, और शायद इसीलिए जर्नी जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है लाइफ में. और जो चीजें कंफ्यूजिंग लग रही हैं, हो सकता है कल वही आपकी बिगेस्ट लर्निंग बन जाए. तो टेंशन कम करिए, क्यूरियोसिटी ज्यादा रखिए, स्माइल करते रहिए, और ज्यादा याद रखिए कि बस लाइफ को ईजी बनाना है. बाय द वे, ये जो गाने हैं ये आप ही के लिए हैं, इन एंजॉय कीजिए. मेरे जाने का टाइम हो गया. एवरी डे आई से कि यार मेरे जाने का टाइम हो गया है, दिस इज द लास्ट थॉट ऑफ द डे. सो अभी भी बस यही बोलूंगी कि लाइफ को हमेशा याद रखिए, और याद रखिए कि लाइफ बहुत मस्त है. मतलब लाइफ में हर चीज़ यू नो जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और बस वो सीखते रहना है. सो इसी के साथ आई विल से कि कल मिलते हैं सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर विद दिस ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन कि भाई क्या क्या है जो आपको और मुझे यू नो खुश रखने के लिए काफ़ी है. सुनते रहिए रेडियो ऑल एफ, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

खातिर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स्थ ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रन। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बेनोम रन, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
4: Olive
2: Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, our number one.
5: Olive Music Marathon. 1 ghanta, non-stop back.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: ऑलिव म्यूजिक मैराथन. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रन. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सीआर सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बेनोम रन, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back to back gaane.

0: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
1: रज्जो हो या अकीरा, हर कैरेक्टर में ये दबंग है।
2: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।
1: और इनका हमारे दिलों को लूटना कोई इत्तेफाक नहीं, जादू तेरा मुझ पे चल गया। क्योंकि नाम है इनका सोनाक्षी सिन्हा। हैप्पी बर्थडे टू सोनाक्षी सिन्हा। लिसन टू सोनाक्षी स्पेशल सॉन्ग्स ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3।

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। मॉर्निंग से नाइट।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM मिर्ज़ापुर से वारू रोमी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गाना सुना आपने और तनीषा आ गया आपके साथ ऑल रिचार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान
1: तुझे जितना मैं प्यार करूं यार किसी और से ना किया
0: बहुत सुंदर गाना मेड इन चाइना मूवी से
1: गोरी तेरी आंखें कहे रात भर सोई
0: ऐसा बिल्कुल नहीं है गोरी मस्त सोई एकदम पूरी रात द प्रॉब्लम इज गोरी ने काजल नहीं लगाया है हाँ जी चुनरी चुनरी का रीमेक भी है आपके लिए लाइंड अप इस घंटे में और ढेर सारी बातें भी करनी है लेकिन पहले जानेंगे आपके हाल चाल तो बताएं कैसे हैं 3311063 पर मैसेज कीजिए एंड टेल मी जून 2nd ट्यूसडे का ये दिन कैसा ट्रीट कर रहा है आपको हाउ इज द मूड एंड व्हाट इज द वाइब ऑफ द डे ऑल्सो इस गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर रहे हो आ जाओ फटाफट से बताओ मुझे 3311063 पर स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास

0: Tanisha.
1: Tanisha. अरिजीत सिंह और प्रिया सरैया की आवाज में वालम मेड इन चाइना मूवी से आपने ये गाना सुना तनिषा के साथ ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. और देखो ये लाइफ है, ठीक है, इसमें सब कुछ एक जैसा एक लाइन में नहीं चलता, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, मौसम भी तो बदलते हैं ना यार. और हमने वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, हम हर मौसम में चेंज होता है तो ग्लूमी थोड़ी हो जाते हैं. सो वैसे ही अगर लाइफ में थोड़े से डाउन्स आ रहे हैं तो ग्लूमी और सैड होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो बात को, इट विल पास. यस मेरी जान, इसी बात पे एक बढ़िया सा गाना भेजियो, स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास. कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: Delisha.
1: जावेद बशीर साहब की आवाज में ये तूने क्या किया, मैं ये कहना चाहती हूँ मौसम से। तनिषा के साथ है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर, ऑलिव रिचार्ज चल रहा है। यहाँ पर थर्ड हॉटेस्ट मंथ में हम पहुंच चुके हैं एंड राइट नाउ द टेम्परेचर इज 44 डिग्रीज। यस, एंड काफ़ी क्रेजी धूप हो रखी है। ऑल्सो यू नो दिन में जो भी डिलीवरीज हैं या फिर एनी वर्क विच इज सपोज टू बी डन आउटसाइड, वो भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं करने का है 3:30 तक तो एटलीस्ट, क्योंकि आपका ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी जान, आप इम्पॉर्टेंट हैं। सो अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए बहुत सारा, कहीं भी जा रहे हैं कैरी अ वाटर बॉटल विद यू, यू नो फ्रूट्स कैरी करके रखिए, ऐसे फ्रूट्स खाइए जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ऐसा फूड खाइए विच इज़ यू नो लेस ऑयली, क्योंकि ज़्यादा ऑयली फूड खाने से भी प्रॉब्लम होती है समर्स में। ऑल्सो अगर आप कहीं बाहर से खाना मंगवा रहे हैं यू नो किसी डिलीवरी सर्विस से, तो मेक श्योर कि उसे जल्दी खा लें, उसे रख कर उसके बाद लेटर ऑन खाएंगे ये वाला प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ख़राब हो जा रहा है और राइट नाउ फूड पॉइजनिंग के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो आपको ज़रा से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। सेंडिंग मुझको याद सताई दे रही इन द वॉइस ऑफ हिमेश रेशमिया, स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास।

yesterday. Story of the day. Oh, oh, oh, oh. Story of the day. उन्होंने एक बार कहा था, A film should make you feel, not explain everything. और शायद इसीलिए उनकी फिल्में देखी कम महसूस ज्यादा की जाती हैं। रोजा हो, बॉम्बे हो, दिल से हो या फिर पोनियन सेल्वन, हर दौर में उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, सिनेमा को एक नया एक्सेंट दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मणि रत्नम के कैरेक्टर्स अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी डायलॉग बन जाती है। और जब बाकी डायरेक्टर्स ऑडियंस को स्टोरी सुनाते हैं, मणि रत्नम ऑडियंस को स्टोरी के अंदर ले जाते हैं, जिसने बारिश को रोमांस बना दिया, खामोशी को कॉन्वर्सेशन बना दिया और सिनेमा को पोएट्री बना दिया। हैप्पी बर्थडे टू द मास्टर ऑफ मोमेंट्स।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
3: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक. अरमान मलिक 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: तनिषा
1: तनिषा अमरिंदर गिल की आवाज में लकीरा बहुत सुंदर गाना है यार, बहुत प्यारा। तनिषा के साथ सुना आपने रेडियो 106.3 एफएम पर ऑल ओवर चार्ट चल रहा है यहाँ पर। एंड जब भी हम गूगल मैप्स या फिर कोई भी मैप वाला ऐप यूज कर रहे होते हैं टू नो दी डायरेक्शंस, और हमने गलती से एक टर्न मिस कर दिया है, हम सीधे निकल गए हैं, ठीक है, तो वो कभी भी ये नहीं बोलता कि गलत हो तुम, स्टूपिड हो तुम, तुम्हें मैप फॉलो नहीं करना होता है। वो चुपचाप से रीरूट कर देता है, जिस रास्ते पे आप निकल गए हैं उसी रास्ते से आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाने का काम वो करने लग जाता है। एंड दैट इज द वे वी शुड लीड आवर लाइव्स आल्सो। अगर ऐसा लग रहा है कि यू नो ये जिस भी रास्ते में अभी हूँ या जो भी मैं अभी कर रही हूँ वो मुझे मेरे गोल तक नहीं पहुँचा रहा है, तो मे बी आप थोड़ा सा रास्ता चेंज करके देखिए। You never know, थोड़ी देर लग सकती है पहुंचने में, पर पहुंचोगे तो सही। कोशिश तो करनी बनती है ना, जस्ट बैठ के ये क्रिप करते रहना कि यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझ में ही प्रॉब्लम है, मैं ही ऐसी हूँ, दैट इज नॉट द सोल्यूशन एंड दैट विल नेवर हेल्प यू। इन अ वे वी आर मैनिफेस्टिंग बैड थिंग्स बाय डूइंग दैट टू आवर सेल्व्स। सो प्लीज ये सब ना करें। मैं भी करती थी यार, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, करना छोड़ दो, लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। थोड़ी देर लगेगी पर जो आप चाहते हैं वो जरूर मिलेगा, ट्रस्ट मी। जैसे आपने मांगा था नया गाना भेज रही हूँ आपके लिए, चुनरी चुनरी। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और भाई ये जो AI की आने पर सब डर गए थे कि हमारी नौकरी चली जाएगी. कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि AI ने इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया डेटाबेस में कंपनी के कि उन्हें इंसानों को बुलाना पड़ा उसे फिक्स करने के लिए. एंड यही हालत बहुत सारी कंपनीज की हो रही है इस वक्त, बिकॉज AI बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा है और जो डैमेज वो कर रहा है वो और ज़्यादा महंगा पड़ रहा है देन paying salaries to humans. So now companies are rehiring humans and retiring the AIs जो उन्होंने replace करे थे. So see, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी बनाई किसने, इंसान ने, वो उसको कैसे ओवरपावर कर सकती है. बस हमें थोड़ा सा स्मार्ट रहने की ज़रूरत है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना कि वो हमें इस्तेमाल कर पाए. जी हाँ, stay tuned and Jio Bindaas.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: Denisha.
1: Denisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और आज का जो word है, oh my God, it is absolutely beautiful.
2: ये है चलती फिरती dictionary.
1: तो आप कतर में रहते हैं, ये चीज हम हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं जैसे ही बाहर निकलते हैं. यहाँ पे लोगों को परफ्यूम्स का बहुत शौक है और इतनी खूबसूरत खूबसूरत फ्रेग्रेंसेस हैं यहाँ पे. एंड एवरी अदर पर्सन यू क्रॉस, एक लिंगरिंग सा सेंट, यू नो, उनके परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस है वो हमारे पास रह जाता है. यू नो, इट कीप्स ट्रैवलिंग थ्रू द एयर. और ये जो चीज है ना, दैट दिस लिंगरिंग ट्रेल ऑफ सेंट दैट हैंग्स इन द एयर आफ्टर समवन हैज पास्ड, उसको कहते हैं सिलाज. SILLAGE. Yes, सिलाज. And next time when you go to buy a perfume and you ask, you know, इसका projection कितना, you can ask, इसका सिलाज कितना है? Yes. कितना cool word है यार और कितना bougie sound कर रहा है. That's why I loved it. Well, now we know the lingering trail of scent is known as सिलाज. Stay tuned and you've been with us.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par.
1: TikTok
0: में एक जरूरी सूचना लाई हूँ. जितने भी iPhone यूजर्स हैं, स्पेसिफिकली iPhone 17 जिनके पास है या फिर iPhone 17 Air जिनके पास है, उनके लिए. सो रिसेंटली iPhones में कुछ तो चार्जिंग का इशू आ रहा था. देयर वाज सम बग जो कि यू नो बैटरी ड्रेन भी हो जाए तब भी चार्ज नहीं होने दे रहा था. एंड कुछ लोगों ने ब्लैक स्क्रीन के लिए भी कंप्लेन करी थी. जब बैटरी ड्रेन हो जाती है उसके बाद ब्लैक स्क्रीन आ जाती है एंड देन इट डजंट कम बैक टू द नॉर्मल. तो उसका जो है अपडेट आ गया है, आप उसको फिक्स कर सकते हैं. आपने जाना है सेटिंग्स में, जनरल में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, और जो नया अपडेट है प्लीज उसे इंस्टॉल करें सो दैट यू कैन फिक्स द बग. यस, और सुंदर यू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंद.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: is left behind after the person has, you know, crossed you. Aur wo Qatar mein very normal hai, hai na? Aur yahan agar main bhi actually perfume girly ban gayi hu, mujhe bhi aise acche oud based perfume ka kafi shauk ho gaya hai. Coming back to lame jams now, bhatak jaati hu topic se. So, lame jams ka aaj ka sawal hai, alphabets mein se hi batana hai. As you know, kuch din se hum alphabets ke bare mein hi baat kar rahe hain. Which letter in the alphabet is a line? बताए मुझे 3311063 पर मैसेज कीजिए. Which alphabet में which letter is a line, ये आपने मुझे बताना है. आप कॉल भी कर सकते हैं 4441063 पर. फिलहाल सेलिब्रेट करते हैं सोनाक्षी सिन्हा का हैप्पी वाला बर्थडे. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.
1: रज्जो हो या अकीरा, हर कैरेक्टर में ये दबंग है.
2: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है.
1: और इनका हमारे दिलों को लूटना कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि नाम है इनका सोनाक्षी सिन्हा. हैप्पी बर्थडे टू सोनाक्षी सिन्हा. लिसन टू सोनाक्षी स्पेशल सॉन्ग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव

0: Tanisha.
1: अरिजीत सिंह और शाश्वत की आवाज में बहुत ही कमाल गाना, बहुत ही फन सा नहीं है तमाशा मूवी से, ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर. जी, सो लेम जैम्स का मैंने सवाल पूछा था कि विच लेटर इन द अल्फाबेट इज अ लाइन, और मुझे मैसेजेस आए हैं. इरफान जी ने मैसेज किया है,
2: द आंसर फॉर टुडेज लेम जैम्स क्वेश्चन शुड बी लेटर एल, और आई कैन थिंक ऑफ लोअर केस आई बिकॉज दे कैन बी स्ट्रेट, राइट, दे आर लाइक लाइंस.
1: सेम टू सेम मैंने भी सोचा था इरफान जी, पर अनफॉर्चुनेटली ये करेक्ट आंसर नहीं है. जी हाँ, सो एक और मौका दे रही हूँ, सोचे विच लेटर इन द अल्फाबेट इज अ लाइन. 3311063 पर मैसेज कर रहे हैं, बताएं मुझे. एन ने वायदे में मैसेज कर दिया है और एकदम करेक्ट जवाब दिया मेरी जान, क्या बात है. आप कॉल भी कर सकते हैं 4444106 पर. सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर, फुल नॉस्टैल्जिया का तड़का. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.
0: ऑसम
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
0: Awesome.

Olive Bay. Story of the day. Story of the day. उन्होंने एक बार कहा था, A film should make you feel, not explain everything. और शायद इसीलिए उनकी फिल्में देखी कम, महसूस ज्यादा की जाती हैं। रोजा हो, बॉम्बे हो, दिल से हो या फिर पोनियन सेल्वन, हर दौर में उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, सिनेमा को एक नया एक्सेंट दिया है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनी रत्नम के कैरेक्टर्स अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी डायलॉग बन जाती है. और जब बाकी डायरेक्टर्स ऑडियंस को स्टोरी सुनाते हैं, मनी रत्नम ऑडियंस को स्टोरी के अंदर ले जाते हैं, जिसने बारिश को रोमांस बना दिया, खामोशी को कॉन्वर्सेशन बना दिया और सिनेमा को पोएट्री बना दिया. हैप्पी बर्थडे टू द मास्टर ऑफ मोमेंट्स.

0: जैस की आवाज में सुनिया सुनिया रहा था ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ ऑल ओवर रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे जाने का मेरी जान मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे कल खुशी थोड़ी और बढ़ेगी क्योंकि वेंसडे है वीकेंड से और नज़दीक तो इट्स ऑब्वियस राइट बट तब तक आपने अपना ख्याल रखना और मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस करो ऐसा कभी हो जाए यू नेवर नो राइट तो आप मैसेज कर सकते हैं 3311106 पर या फिर सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर लो radioolive.qu इज़ द हैंडल बिंदास जब मन करे बिना किसी हेजिटेशन के मैसेज कर दो वहाँ पे जी हाँ वी आर देयर फॉर यू एंड चेक आउट द वीडियोज एंड पोस्ट वी आर डूइंग ओवर देयर वहाँ पे इंटरेक्ट कीजिए मैसेज उस पर कॉमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट हमें पता चले कि चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं जी हाँ और बस अपना ख्याल रखो क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हो मेरी जान सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, Ghana.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

ऐसे दिल से बुलाएगा जितना इस गाने ने बुलाया। ये फिल्म और ये गाना मतलब बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। 2011 में एक फिल्म आई थी स्पीडी सिंग्स, ये गाना उससे है, बहुत ही कमाल का। और आज मैंने बहुत दिन बाद सुना, आई एम लाइक यार ये भी तो गाना था। अभी फिलहाल यही तो शो है और यही तो शो था। जबरदस्त इवनिंग्स आप लोगों के लिए, फ्राइडे को छोड़ के आप हर रोज जो है वो सुनते हैं। और बताइए कैसा रहा आपका आज का दिन, मूड कैसा है आपका, और उसके साथ साथ चार घंटे अब अपने होने वाले हैं आपको पता ही है, और चेहरे पे स्माइल रखनी है क्योंकि आप अपनी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं। और जहां पे भी सुन रहे हैं सुनते रहिए, रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिए अगर आप अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं या अपने रेडियो से दूर जा रहे हैं। रेडियो आपके फोन में भी है, आपको पता है ना, एप्लीकेशन के थ्रू सुन सकते।

बताना। मतलब मेरे बगैर जीना है दिल है मुश्किल है ना, मेरा आपके बगैर जीना मुश्किल है यार। बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन, आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के साथ भेज दो 3311106 पर।

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: This hour is brought to you by
3: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: कल जब मैं शो खत्म कर रही थी तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अब मैं एक फिल्म देखने जा रही हूँ जिसके बारे में पूरा इंटरनेट बात कर रहा है, मेरे को ऐसा थोड़ा पीर प्रेशर हो रहा था उसको लेकर। फिल्म का नाम है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन जो अभी आई है फिल्म, इससे पहले भी एक ऑब्सेशन है जो कि नेटफ्लिक्स पे है, वो उससे उसका कोई लेना देना नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट है ये। देखो अब इसके बारे में बात हो रही है कि लोग बोल रहे हैं भाई भयंकर जो है कमाल की फिल्म है और आपको डराती है। सो लेट मी टेल यू, ये फिल्म अलग तरीके से आपको डराती है। अब क्या है कि जब भी हम कोई हॉरर फिल्म देखने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं यार भूत दिखने वाला है भाई, नहीं, इस फिल्म में आपको भूत तो नहीं दिखने वाला है लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्टफ इसमें दिखने वाला है, और वो क्रीपी स्टफ जो है वो आपको इतना ज्यादा स्केयर करने वाला है, एकदम अनसेटलिंग और अनकंफर्टेबल जो है इस मूवी को देख के आप होने वाले। लेकिन सच्ची बोल रही हूँ, फिल्म को थिएटर में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसको लिखा, डायरेक्ट किया, एडिट किया एक न्यू कमर जो है करी बारकर करके, उन्होंने लिखा है भाई साहब, मतलब आप फिल्म देखने के बाद आपको ये लगेगा क्या देख लिया। तो ऐसी फिल्मों को देखने का मजा आता है जो कि आपके थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आपके दिमाग में रहती है, और स्पेशली वो फ्रीकी निकी की स्माइल आपके दिमाग में रहेगी। आपने फिल्म भी अगर नहीं देखी है तो आपको लगेगा क्या फ्रीकी निकी बेटा जब आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा। 5:22:27 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। कितना क्यूट गाना है यार ये। फिल्म का जो म्यूजिक है, ये जो गाना है वो अली जफर ने गाया है, अली जफर ने कंपोज किया, अली जफर ने लिखा है, अली जफर ही है इसमें। सुनते रहो रेडियो ऑलिव को, कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: बाबुल सुप्रियोल का याग्निक की आवाज, मुझे कुछ कहना से बहुत ही खूबसूरत गाना यार, एकदम रिफ्रेश। जी मैं कहीं सुनियो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। हीट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी फैजल जी का भी मुझे मैसेज आया था थोड़ी देर पहले, कहते कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मैंने बोला कि यार कभी कभी आपको डिहाइड्रेशन की वजह से भी सर में दर्द होने लग जाता है। उन्होंने बोला कि नहीं यार, मैंने 1.5 लीटर की 3 बॉटल जो है पी लिए, पसीना आता है। एंड यस यार, इरिटेशन तो इस गर्मी में होती है, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी जो है वो चली जाती है। बट क्या करेंगे, अभी ये 3-4 महीने इस गर्मी से डील करना पड़ेगा। और अभी देखते हैं कि आज कितना टेम्परेचर हम डील कर रहे हैं। मौसम आपके, सुनो मौसम आपके, सिमरन के साथ, सुनो। मतलब गर्मी का वाट हले भी खत्म नहीं हुआ हैगा। ओके, 42 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 43 डिग्री, एंड हाईएस्ट टेम्परेचर जो है 44 डिग्री सेल्सियस है आज का, एंड ह्यूमिडिटी 12% है, एंड विंड जो है 14 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से चल रहा है। कल मैं मुशर्रफ वाली साइड गई थी, ओके, सो वहाँ पर हम आउटसाइड जो थे वो बैठे थे, अच्छी हवा चल रही थी यार। मतलब इतना टेम्परेचर है मैं मान रही हूँ, बट यस, अब रात के टाइम पे आप थोड़ा सा बाहर निकल सकते हो यार।
1: मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे वो गोरी, आएंगे तेरे सजना।
0: बस फिर क्या, सुंदरी रेडियो ऑलिव गोर के जरिए जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बिन उमरान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

हाँ जी लेकिन जितने भी लोग मेट्रो में ट्रेवल करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बोला है कि भाई कुछ रूल्स जो है सेफ्टी रूल्स आपको जो है वो फॉलो करने, आप एक तो सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है, अपनी चीजों का ध्यान जो है वो रखो एंड कोई इमरजेंसी हो तो आपको असिस्टेंस जो है वो इमिजिएटली जो है वो लेनी है, और उसके साथ साथ आप डोर से जो है वो सट के खड़े मत होइएगा, थोड़ा डिस्टेंस जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग जब होती है तो आपको दूर ही रहना है डोर से, ठीक है, क्योंकि डोर अगर आप उसके पास रहेंगे तो फिर कुछ चीज़ जो है वो आपके लिए सही नहीं है कि डोर खुल जाए या बंद हो, मतलब दिक्कत हो सकती है। एंड उसके साथ साथ जितने भी साइंस दिए हुए हैं स्टेशन पर इंस्ट्रक्शंस को आपने पूरा फॉलो करना है, एंड ऑफ कोर्स आपको स्मोकिंग जो है वो स्टेशंस के अंदर जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है, और अपने बच्चों का जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चे जो है वो आपको पता है उड़ते फिरते रहते हैं, तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप भी सेफ रहिए और अपने साथ बाकी लोगों को भी सेफ रखिए।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: एन एक्शन हीरो सिमरन कौर आप के साथ क्या है आज
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: एक फोटो जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर. एक ग्रेजुएशन का फोटो है जिसमें एक लड़की सेल्फी ले रही है और पूरे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस सेल्फी में खास बात यह है कि जितने भी लोग उस सेल्फी में दिख रहे हैं सिवाय उसके, उसने सब पे सबके फेस पे जो है वो स्माइली डाल दिया है. तो उस चीज को बोलते हैं प्राइवेसी. जब आप दूसरों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हो तो इसी तरह की चीजें जो है वो आप करते हो. बट इसने मतलब उस फोटो में मैंने कम से कम देखा होगा 50 लोग रहे होंगे, 50 उसने इमोजी सबके फेस पे डाले ताकि किसी की प्राइवेसी जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, है ना. सो कतर में भी यही चीज है कि हमको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए. जब भी हम फोटोज क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो आसपास जो लोग हैं जिनको नहीं पता है कि आप उनकी वीडियो में हो या फोटो में हैं, वो नहीं दिखने चाहिए किसी ना किसी तरीके से. या तो अगर आ गए हैं और वो फुटेज आपका दिखाना जरूरी है तो उन लोगों को जो है वो आप ब्लर कर दीजिएगा ताकि वो लोग जो हैं वो उसमें ना दिखे. सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है. कल को मैं अगर कहीं पे बैठी हूँ, है ना, मैं अपना ही मतलब अब मेरा मी टाइम चल रहा है किसी कैफे में या बैठी हूँ या किसी के साथ बैठी हूँ और बाद में सोशल मीडिया पे मुझे पता लगता है भाई मेरी वीडियो और फोटो, कितना बुरा लगता है यार. सबकी अपना अपना होता है तो किसी की भी प्राइवेसी को जो है वो आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए. रेडियो ऑलिव कोर के जी ओ बिंदास.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविद पे.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: सोने की तद की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ 6:17:10 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। एक नंबर गाने चल रहे हैं और सोनाक्षी सिन्हा का आज हैप्पी वाला बर्थडे भी है।
1: चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया।
0: सिन्हा के एक नंबर गाने जो है हर शो में आपने आज सुने होंगे एंड उसके साथ साथ मैं आप लोगों के मैसेजेस जो है वो भी देख रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट मैं थोड़ी देर में आपसे आके जो है वो मिलती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में प्रेयर का टाइम जो है वो होने वाला है। एंड एक चीज जो है वो मैं आजकल बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, वो है मैच अपडेट्स। एग्जैक्टली आदत पड़ गई थी यार, इतनी देर से मैच चल रहे थे उसकी अपडेट्स देने की, बट यस अब वो मैच खत्म हो चुके हैं। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास। चक्को फिर अगला कूल वाला गाना, बाहर का मौसम तो कूल नहीं है, गाना तो कूल हो सकता है।
2: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Year।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Olive, your happiness frequency.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: This hour is brought to you by
8: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: चीज है यार, और ड्रामे पास बने रहोगे, मस्ती में रहोगे, खुश रहोगे यार, और बाकी लोगों को भी खुश रहोगे, क्योंकि स्ट्रेस लेके किसी का कभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक चीज जो है उसका आपको ध्यान जो है वो रखना है, इस चीज का स्ट्रेस आपको लेना पड़ेगा कि यार गाड़ी में कुछ ऐसा तो नहीं छूट गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस जो है वो आप लोगों के लिए करी है कि आप जब भी अपनी गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, मेक श्योर, क्योंकि गर्मी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो एक्स्ट्रा ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि आप गाड़ी में जो है फोन, पावर बैंक्स जो है वो ना छोड़े जब गाड़ी आपकी बंद हो, गाड़ी में आप नहीं हो, लाइटर्स नहीं होने चाहिए, परफ्यूम, सैनिटाइजर, फ्लेमेबल जो आइटम्स रहती हैं बेसिकली वो नहीं होनी चाहिए, एंड अनसेफ जो इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशंस हैं उनसे अपनी गाड़ी को थोड़ा सा दूर रखिए, बाहर रखिए, है ना। गर्मी बहुत ज्यादा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सवारी यहां पर अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है, सवारी आप हैं, सामान है आपकी गाड़ी, ध्यान रखिएगा उसमें ये सारा सामान नहीं होना चाहिए। सिमरन गौरे आपके साथ, चियो बिंदास, स्टे सेफ गाइस।
1: रज्जो हो या अकीरा, हर कैरेक्टर में ये दबंग है।
2: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।
1: और इनका हमारे दिलों को लूटना कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि नाम है इनका सोनाक्षी सिन्हा। Happy birthday to Sonakshi Sinha. Listen to Sonakshi special songs only on Radio Olive.

Story of the day. Story of the day. Oh, oh, oh, oh. Story of the day. उन्होंने एक बार कहा था, a film should make you feel, not explain everything. और शायद इसीलिए उनकी फिल्में देखी कम, महसूस ज्यादा की जाती हैं। रोजा हो, बॉम्बे हो, दिल से हो या फिर पोनियन सेल्वन, हर दौर में उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, सिनेमा को एक नया एक्सेंट दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मणि रत्नम के कैरेक्टर्स अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी डायलॉग बन जाती है। और जब बाकी डायरेक्टर्स ऑडियंस को स्टोरी सुनाते हैं, मणि रत्नम ऑडियंस को स्टोरी के अंदर ले जाते हैं, जिसने बारिश को रोमांस बना दिया, खामोशी को कॉन्वर्सेशन बना दिया और सिनेमा को पोएट्री बना दिया। हैप्पी बर्थडे टू द मास्टर ऑफ मोमेंट्स।

0: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: This hour is brought to you by
0: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

ना डंगी साला। इस गाने में बोलते हैं सबकी है माफा माफी। गाना गाने में इतना बह जाते हो, लिरिक्स में इतना बह जाते हो कि क्या बोल रहे हो कुछ समझ ही नहीं लग रहा है यार। लेकिन कूल मैं कह सुनियो कि हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है।

0: इन माय केस नैना का कसूर नहीं है क्योंकि आंखें बड़ी छोटी छोटी है, लेकिन जबान का कसूर है। सारे पंगे सारे राड़े इसी वजह से होते हैं यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: मैंने ना थोड़े दिन पहले किसी ने एक बात बोली थी, कुछ सिचुएशन थी, कुछ कहीं पे किसी की प्रॉब्लम की बात हो रही थी, तो उसके लिए एक बात बोली थी जो कि मेरे दिमाग में रह गई, जिसमें एक इंसान जो है ना, हम सबकी लाइफ में एक फेज आता है जब आप ना गिव अप करना चाह रहे होते हो, है ना। तो किसी ने मुझे बोला कि एग्जिट जो है ना हमेशा ऑप्शन होती ही होती है, लेकिन उससे पहले आप अपना पूरा जो जितना भी अपना जोर जो है ना उस सिचुएशन पे या जो भी आपकी लाइफ में चल रही है, जो फेज चल रहा है, उस पे अपना पूरा जोर लगा दो, क्योंकि एग्जिट आपके पास हमेशा ही ऑप्शन होती है, लेकिन उससे पहले आप जो कर सकते हो वो करो, उसके बाद अगर वो चीज़ आपकी हुई या आपको मिली तो आपके आपके उसमें थी कि ठीक है इसी से चीज़ें अच्छी होनी है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं मिली तो ऊपर वाला किसी के साथ कभी भी गलत नहीं करता। अगर आप अभी इस सिचुएशन में हो जहां पर आप गिव अप करने की सोच रहे हो, तो पहले अच्छे से लड़ लो इस सिचुएशन से, एग्जिट तो हमेशा ही ऑप्शन होती है। सिमरन गौरे आपके साथ, जियो बिंदास।
1: Song of the Hour.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
5: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
6: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.

la guerre est soul. सात बज के पांच मिनट मैं ये सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ. यार मेरी क्या गलती है,

अभी जो मैं बताने वाली हूँ ना, तो आपके दिमाग में एक चेहरा और एक नाम जो है ऑलरेडी आ जाएगा, और मतलब ऐसा होगा। देखो, आप कोई भी फिल्म देखते हो, कोई नई सीरीज देखते हो, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, आपकी बैंड बजती है, आपको वेंट आउट करना होता है, तो वो एक इंसान होता है जिससे आप ये सारी बातें जो है वो शेयर करते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने जो है वो ऑब्सेशन मूवी कल देखी, जिसके बारे में बता रही हूँ, मतलब हर कोई इस फिल्म के बारे में बात कर रहा है। तो वो फिल्म देखने के बाद मैंने मेरे दोस्तों के साथ, जो मेरे खास दोस्त हैं, उन लोगों के साथ देखी। उसके बाद अब दोस्तों के साथ वो फिल्म देख ली आपने, अब वो फिल्म आपको अच्छी लगी है या बुरी लगी है, जैसे भी है, आप ये बात किसको बताओगे? सबसे पहले तो मैं ये बात जो है मेरी फैमिली को बताती हूँ, क्योंकि मेरा उनके साथ वैसा बॉन्ड है कि अरे यार, मैंने हॉरर फिल्म देखी है तो तुम भी ये फिल्म देखो, ये वाली फिल्म देखनी है, ये वाली फिल्म नहीं देखनी है। सो अगर वो एक्सपीरियंस मैंने मेरी फैमिली के साथ किया है, तो देर आर माई 2-3 फ्रेंड्स जिनके साथ मैं ये बात शेयर करती हूँ कि अरे यार, मैंने वो फिल्म देखी है या वो सीरीज देखी है, तू देख। या फिर जब भी हम मिलते हैं तो बात करती, तूने कुछ नया सीरीज देखा क्या, तूने कोई नई फिल्म देखी क्या, मैं यहाँ पे वेकेशन के लिए सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। मतलब ये सारी छोटी छोटी बातें जो है वो आप अपने खास दोस्तों के साथ जो है या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हो। सो आपके जहन में अगर वो नाम आ गया है, बताना चाहे तो बता भी सकते हैं 3311063 पर। सिमरन कौरी आपके साथ, जी अविंदास गिनी वेज सनी 2 से ए खुदा ये गाना अल्तमश फरीदी की आवाज़।

0: मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो बेटा तुम ही पानी पी लो यार। आपके साथ आज ना मैंने एक ऐसा गाना सुना जिसको मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, क्या आप भी भूल गए थे क्या? और मुझे पता नहीं था कि स्ट्राइकर नाम की कोई फिल्म भी आई थी, ये उसी से गाना था यार।
1: सफर का ही था मैं, सफर का रहा।
0: और जबरदस्त इवनिंग्स में इट्स टाइम आप लोगों ने बहुत ज्यादा ये वर्ड जो है वो सुना होगा। सो जेंजी जो है ये लिंगों में से एक है। पूकी, आप एक निकनेम जो है वो किसी को दे देते हो जो कि आपका क्लोज फ्रेंड है या फिर आपका लवर है, उसको आप जो है वो पूकी नाम दे देते हो। बड़ा ही क्यूट है यार। 7:19, 10 स्टूडियो घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ, जी ओ बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: CB2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: सफर का ही था, मैं सफर का रहा। थोड़ी देर में मैं नेम गेम खेलने वाली हूं, तो उसके लिए तैयार हो जाइएगा, अपना नाम टाइप करके रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के नाम बोल सकूं। अभी फिलहाल एक बात बोल रही हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जो है वो लेकर आए हैं कि अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को आप एक्सचेंज कर सकते हैं उनके बढ़िया डार्जिलिंग डिजाइन के साथ। सिर्फ और सिर्फ आपको मेकिंग चार्जेस जो है वो देने हैं। और एक तो बात ये भी है कि अब इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से आप जो कतर में 15% गोल्ड प्राइजेस पर सेव कर सकते हैं। सो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जो है आपके लिए राइट प्लेस है। अगर आप क्रेव कर रहे हो कि यार नए डिजाइन्स खरीदने, ओल्ड ज्वेलरी अब बहुत ज्यादा हो गई है, या फिर कुछ नया किसी के लिए बढ़िया वाला खरीदने है, तो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड चाहिए।
1: ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए।
0: आई लव दिस ट्रैक यार, बस थोड़ी देर में होगा। लेकिन एक गाना जो आप और हम भूल गए थे यार,

0: CB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ.
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

प्यारा गाना है यार ये, कुमार सानू, कभी हाँ कभी ना से गाना सुन रहे हैं आप। ए काश की हाल चाल बिना देर लगाए। वेल, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अभी की अभी रेडियो पे बोल दूं तो मैं बोल दूंगी, लेकिन मुझे आपका नाम पता लगना चाहिए। अब नाम कैसे पता लगेगा कि आप मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करने वाले हो? तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106 3। जी हाँ, 3311106 3 पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजो। चलो रवि जी लिखते हैं, लव यू ऑल डार्लिंग। सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है, ये लव यू फव यू बाद में करते हैं, ठीक है? सीधा आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं नामों पे। जुल्फिकार जी, सजाद जी, शिव, कृष्णा, तौसीफ, आसमा, मोहम्मद, डेजी, जय, राशिदा, सुबो, गुलजार जी, शाहिद जी, खेमराज जी, थैंक यू सो मच। ओवेश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रोमन जी, थैंक यू सो मच आपके। कोई मुझे वॉइस नोट भेज रहा है, डार्लिंग आपको क्या लग रहा है मैं बात करते करते अभी वॉइस नोट आपको पढ़ के सुनूंगी क्या? वृशाली जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। वहाब जी, थैंक यू सो मच। पाली जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। फहाद जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी, विनय जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। घनश्याम जी, थैंक यू सो मच। हरिराम व्यास जी, थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू मत बोलो यार, फिर मैं मैसेजेस में कन्फ्यूज हो जाती हूँ। शाहबाज जी, थैंक यू सो मच आपकी। शाहिद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। ऋषक जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रोमन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सूरज, थैंक यू सो मच। वृषिन जी, थैंक यू सो मच। आपकी पूरी फैमिली का नाम वृशाली, वृषिन ऐसे करके ही है क्या? मयंक, करण, ओके लंबी लिस्ट है नामों की। मयंक, करण, मोनिका, दिव्या, अमित, चार्विक, मस्तानी जी, थैंक यू सो मच। शाहिद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रोमल जी, थैंक यू सो मच आपके। कितनी बार लिखोगे यार अपना नाम, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इतने सारे नाम है। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सत्या जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया ना, अब बेटा थैंक यू लिखो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेजो जो कि आप हमेशा यूज करते हो। एंजॉय करो अरिजीत सिंह की आवाज।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Olive, your happiness frequency.
2: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रन। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बेनोम रन। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
3: इस गाने को मयंक एंड फैमिली ने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट सॉन्ग नहीं ले रही हूँ डार्लिंग। ये गाना ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: Hi guys, this is Abhar Shetty Khurana और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिव.

आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी

0: राहत साहब की आवाज नजर से नजर मिले और फिल्म में मिले ना मिले,
1: वाह राइम हो गया यार।
0: हां जी मैं कहीं सोने होगी तो देखिए हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौन है आपके साथ। तो फिर एक काम कर बेबी,
2: जीने दे इस दिल को जीने दे
0: और मुझे भी जीने दे यार। ओके फाइन, अब हमारे पास एक टाइम है जो कि आपको भी मुझे देना है। ओके तो वो टाइम मैं आपको भी दे रही हूँ, बस आपको इतना चुटकू सा सोचना है, एकदम चुटकी, एक चुटकी सॉन्ग। हमने एक नया जो है नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, सो या
3: रेडियो ऑलिव पर
2: एक चुटकी सॉन्ग, एक चुटकी सॉन्ग
4: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: सो एक चुटकी सॉन्ग में मैं आपको एक चुटकी ही सॉन्ग सुनाऊंगी और आपको मुझे बताना होगा गेस करके कि वो कौन सा गाना है। ये हुआ एक चुटकी गाना, एक बार वापस से सुना रही हूँ और गेस करिए ये कौन सा गाना है फटाफट से। ओके आपने वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है, गाना चाहे गा दीजिए, बताना चाहे बता दीजिए, बट अपना नाम जरूर बताइएगा, लिख के मत भेजिएगा। ये है यार, फटाफट से वॉइस नोट भेजिए कौन सा गाना है, 3311063 पे भेज दो फटाफट से।
5: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
6: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,
0: सुपर रोमांटिक गाना, देयर यू गो। हाय हाय, एश किंग ने इस गाने को क्या कमाल से गा दिया यार।

0: असलम। 8:31, 50 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे सिमरन कौर आपके साथ। एक चुटकी सॉन्ग की कीमत तुम जानते हो? लेकिन आप सोचेंगे अरे यार ये तो एक चुटकी सिंदूर था, लेकिन अपन बॉलीवुड वाले हैं, अपन एक चुटकी सिंदूर नहीं सॉन्ग करेंगे।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: एक चुटकी सॉन्ग, एक चुटकी सॉन्ग,
3: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: सो एक चुटकी सॉन्ग में मैंने आपको एक चुटकी सॉन्ग सुनाया था और आप लोगों को गेस करना था। थैंक यू सो मच। चलिए आप लोगों के जवाब सुनते हैं।
4: Hey Simran, how are you? This is Majibul. The song name is starting from जो खाबो ख्यालों में सोचा नहीं था।
0: ऐसे लगता है गाने के साथ पत्थर मार दिया मेरे ऊपर आपने। थैंक यू।
5: हेलो सिमरन, कैसी हैं? मैं नबील फ्रॉम पाकिस्तान। इस सॉन्ग का नाम है मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। इमरान हाशमी का ये सॉन्ग है।
0: इमरान हाशमी बता दिया, गाने को बीच में से गा दिया, लेकिन गाने की पहले जो मुखड़ा था वो तो बताओ यार।
6: Hi Radio Olive. Hi. The song that was just played is Haan Tu Hai.
0: Okay.
6: This is from Samantha.
0: Thank you so Thank much, you. Samantha.
7: Hi Simran ji, good evening.
0: Very good evening.
7: मैं प्रकाश बोल रहा हूँ।
0: आहा।
7: और ये सॉन्ग है

0: बात है।
1: जियो बिंदास।
0: ओहो, पर जियो बिंदास भी सुरीला हो गया दोस्त। बिल्कुल यही गाना है। थैंक यू सो मच यार। ये नया जो हमने सेगमेंट स्टार्ट किया है, एक चुटकी सॉन्ग, आपका रिस्पांस बड़ा सही आ रहा है यार। खेलेंगे अब हम।

the day. Story of the day. Oh, oh, oh, oh. Story of the day. उन्होंने एक बार कहा था, a film should make you feel, not explain everything. और शायद इसीलिए उनकी फिल्में देखी कम महसूस ज्यादा की जाती हैं। रोजा हो, बॉम्बे हो, दिल से हो या फिर पोनियन सेल्वन, हर दौर में उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, सिनेमा को एक नया एक्सेंट दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मणि रत्नम के कैरेक्टर्स अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी डायलॉग बन जाती है। और जब बाकी डायरेक्टर्स ऑडियंस को स्टोरी सुनाते हैं, मणि रत्नम ऑडियंस को स्टोरी के अंदर ले जाते हैं, जिसने बारिश को रोमांस बना दिया, खामोशी को कॉन्वर्सेशन बना दिया और सिनेमा को पोएट्री बना दिया। हैप्पी बर्थडे टू द मास्टर ऑफ मोमेंट्स।

0: fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: This hour is brought to you by...
0: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: आतिफ असलम की आवाज में ए अजनबी, अभी आप ये सुन रहे थे और अब आप और हम जो है 24 घंटे के लिए अजनबी होने वाले हैं। सिमरन कौर है आपके साथ। अब आपको पता है कि 9 बजने वाले हैं, 4 घंटे पूरे होने वाले हैं, सिमरन कौर के कल्टी माने का टाइम जो है वो आ चुका है और अगले 2 घंटे जो है मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए और फन करिए, म्यूजिक सुनिए, अच्छा अच्छा म्यूजिक और भी आप लोगों के लिए जो है वो सेट करके रखा हुआ है। अभी फिलहाल लाइफ अगर सेट नहीं है ना तो उसको सेट करने की कोशिश आप मत करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए और अपनी जो है वो जिंदगी में आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो छोड़ना नहीं है बिल्कुल ही, ऊपर वाले के ऊपर भरोसे मत छोड़ देना, क्योंकि ऊपर वाले को भी ये लगता है कि भाई तुम भी थोड़े हाथ पैर हिलाओ तभी तो मैं कुछ करूंगा यार लाइफ में, बस स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। खाने में देरो ऐश कर देरो चेहरे दे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मंद दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो। रेडियो ऑलिव पर
1: song of the hour ye gana

कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बिन उमरान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।

कंप्लेंट्स, कितने सारे लोग हैं ना जो आपको दिन भर में कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं। यार तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसे क्यों नहीं कर लेते, यार उसने भी तो कर लिया। कंपैरिजन और कंप्लेंट्स एक अलग ही नाता है। लेकिन कोई है एक ऐसा जो उसको आपसे कोई कंप्लेंट नहीं है? आप शायद लेट आओ या जल्दी आ जाओ, या फिर शायद आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, पर मुझे तब भी आपसे कोई कंप्लेंट नहीं है। मिडनाइट लाउंज, क्योंकि यहाँ दिल से जुड़ा जाता है। हे हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मिडनाइट लाउंज के सफर में फिलहाल मैं आ चुका हूं। और अब जितने भी दिन भर में लोगों ने कंप्लेंट्स किए, देखो ना मैं ये कह रहा कि तुम मुझे बताओ, ना मैं चाह रहा तुम्हारी जुबान पे वो और मन में बार बार घूमे ताकि तुम्हारी टेंशन बढ़े। अभी तो सिर्फ बढ़िया बढ़िया गाने सुनो, अपने आप को चिल करो। और याद रखना एक चीज लाइफ में, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग। तो जब कुछ भी परमानेंट है ही नहीं, तो फिर तुम किस चीज को लेकर इतना परेशान हो? और अक्सर जिस चीज के लिए हम परेशान हुआ करते हैं जनाब, वो परेशानी का विषय होता ही नहीं है, समझे? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से सफर को। जल्दी से इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कनेक्ट कर लो मुझे और बताओ मुझे कि कहां से सुन रहे हैं आप मुझे। अपना नाम जरूर लिखेगा, इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके हाई आरजे आकाश इनबॉक्स में और बताइएगा कहां से सुन रहे हैं आप मुझे। अभी फिलहाल मैं स्टूडियो से हूं, स्टूडियो से सुन रहे हैं आप मुझे। चला एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक आज की इस ब्यूटीफुल सी इवनिंग का, एक पहला गाना जो आपके दिल को छू लेगा। जी, बिंदास।

0: इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम सही है, जहां मर्जी जिस मर्जी यादों में अचानक से पहुंचा देता है कुछ सेकंड्स के अंदर। नहीं, हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर। और आज एल्गोरिदम ने मुझे कहां पहुंचा दिया, चलो आपके साथ शेयर करते हैं।
1: रील वाली रियल कहानी,
2: रील वाली रियल कहानी।
0: देखो, कुछ यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन स्कूल के पहले दिन का ड्रामा घर वालों कभी नहीं भूल पाएंगे। नहीं, अगर आपका भी कभी कोई बच्चा है तो आप भी जब उसे पहली बार स्कूल छोड़ने गए हो किंडरगार्टन या फिर एलकेजी में, तो वो बच्चा कभी भी अपनी जो हरकतें वो तो याद नहीं कर पाएगा, लेकिन आप उसका वो फर्स्ट डे वाली मेमोरी नहीं भूल पाओगे। और क्या दिन थे यार वो, मतलब सुबह घर वाले नया बैग, नई बॉटल, नए शूज, इवन आपको जो जो पसंद होता है दिया जाता है ताकि आप किसी तरह स्कूल चले जाओ। और ऐसी आज रील मेरे पास भी आई, जैसे हम स्कूल नहीं पता नहीं नासा मिशन पर जा रहे हैं। नहीं, और स्कूल के गेट पर पहुंचते ही एक तरफ मम्मी की आंखों में आंसू और दूसरी तरफ बच्चा फुल वॉल्यूम में, मम्मी घर जाना है। किसी ने टीचर का दुपट्टा पकड़ लिया, किसी ने बेंच के नीचे हाइड कर लिया खुद को, और कुछ लेजेंड्स ऐसे भी थे जो पहले दिन ही पूरी क्लास को रुला देते थे, ऐसा रोते थे पता नहीं कि उनको देखकर पूरी क्लास रो जाए। और आज वही बच्चे ऑफिस मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, नहीं बिल्स भर रहे हैं और मंडे से डर रहे हैं। वैसे मुझे याद है जब 2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी ना, कितना अच्छा लगता था ना, बारिश का टाइम होता था और वो एक अलग ही टाइम था। और आज अगर 2 महीने की छुट्टियां पड़ जाएं स्कूल की, तो उस टाइम पे अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो आज हम ऑफिस का बैग लिए ढो रहे हैं। नहीं, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अपने स्कूल के पहले दिन की सबसे फनी या मेमोरेबल बात कौन सी याद है, कोई तो होगी। रोए थे या फिर पहले दिन ही दोस्त बन गए थे। मैं हूं आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज, आ रहा हूं जल्दी से वापस इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और अपना जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जर्नी शायद उस दिन शुरू हुई थी जब हमने पहली बार स्कूल का गेट क्रॉस किया था, है कि नहीं। आ रहा हूं वापस, कहीं जाएगा, स्टे ट्यून्ड।

Cashback. Hey, hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज में आ गए हैं हम फिल्मी फ्लैशबैक के सफर में। और आज की फिल्मी फ्लैशबैक का सवाल लेकर आया हूं पहले, ताकि आप उसका जवाब दें और उसका फिर ट्रिविया मैं बताऊं। बताइए, कौन सी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग के दौरान लीड एक्टर ने फिल्म के लिए अपनी आइकॉनिक मूछें पूरे एक साल तक नहीं हटाई थी? सोचिए जरा, बताइए जल्दी से। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और आपका जवाब। चलो मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं ताकि शायद जवाब दे पाओ। ऑप्शन ए लगन, ऑप्शन बी रंग दे बसंती या ऑप्शन सी गैंग्स ऑफ वासीपुर। तो सोचिए जरा, 5, 4, 3, 2, 1। ये तो काउंटडाउन किया था मैंने, जवाब मैं आके वापस बता रहा हूँ। तब तक जाइए नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर, दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Yeah, Midnight Lounge.
2: We have Midnight Lounge. कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रन इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सी आर सलीम और रोशन बशीर ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बेनोम रन वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल
3: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी

Flashback. Hey, hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। तो आज का सवाल मैंने पूछा था कि कौन सी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग के दौरान लीड एक्टर ने फिल्म के लिए अपनी आइकॉनिक मूछे पूरे एक साल तक नहीं कटवाई थी। ऑप्शंस दिए थे मैंने, लगान, रंग दे बसंती, गैंग्स ऑफ वासेपुर। सोचिए, आपको टाइम भी दिया था लेकिन आपने फिर भी आंसर नहीं करा। अगली बार टाइम से आंसर कीजिएगा और सबसे पहले कीजिएगा ताकि आपके नाम के साथ मैं आपको एक प्यारा सा गाना डेडिकेट करूं। अभी तो फिलहाल आयुषी ने सबसे सही जवाब दिया है, लगान। जी हाँ, आमिर खान ने भुवन के करेक्टर के लुक को मेंटेन करने के लिए अपनी आइकॉनिक मूछे काफी लंबे समय तक रखी हुई थी। तो चलिए एक और मौका देते हैं आपसे एक और सवाल का जवाब लेने का। लगान मूवी को किस कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था? चलो ऑप्शन देते हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म या फिर बेस्ट म्यूजिक। सोचिए, जवाब दीजिए और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए। रेडियो ऑलिफ का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और आपका जवाब। अभी फिलहाल मेरा जवाब है कि आपके चेहरे पे मुस्कान आने वाली है और दिल गुनगुनाने वाला है इस प्यारी सी धुन के साथ। जियो बिंदास।

0: कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते जनाब, कुछ सफर खुद को समझने के लिए होते हैं। रोज खुद की तलाश में हम घर से निकलते हैं या फिर पैसे कमाने, कभी सोचा है? या फिर दूर पहाड़ों पर जाने के जो ट्रिप्स बनते हैं वो खुद से मुलाकात करने के लिए बनते हैं।
1: डिजिटल डायरी।
0: Hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज Midnight Lounge में। और आज की डिजिटल डायरी में एक लाइन मिली, मैं खुद ही अपनी तलाश में हूँ। कितनी गहरी बात है ना, हम पूरी जिंदगी लोगों को समझने में लगा देते हैं, किसी को खुश करने में लगा देते हैं, किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में, और एक दिन अचानक एहसास होता है मैं खुद कहाँ हूँ। वही सपने जो कभी अपने थे, वही ख्वाहिशें जो कभी दिल के करीब थी, कहीं जिम्मेदारियों के बीच, कहीं वक्त के शोर में हम खुद से ही थोड़े दूर होते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, तलाश भी खत्म नहीं हुई है अभी। और जब इंसान खुद को ढूंढना शुरू कर देता है तब उसके जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर शुरू होता है, यकीन मानिए। एक सवाल पूछूं, अगर आपको खुद के बारे में एक चीज दोबारा डिस्कवर करनी हो तो वो क्या होगी? अपना बचपन वाला कॉन्फिडेंस, या कोई पुराना सपना, या फिर वो मुस्कान जो बिना वजह आ जाती थी, बिना किसी रीजन के बस बैठे बैठे हंस लिया करते थे, छोटी छोटी चीजें खुद ब खुद आपको मुस्कुराहट दे जाती थी। मैं हूं आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज। दुनिया को समझने से पहले कभी कभी खुद को समझना भी जरूरी होता है दोस्त, और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी डिस्कवरी खुद की ही होती है। समझे? पहले खुद को समझो, फिर और उससे एक्सपेक्ट करो कि वो तुम्हें समझे। जियो बिंदास।

देखो हर याद शोर मचा के नहीं बनती कि हर जगह बहुत ज्यादा रौनक सी जमी है, वहीं बस एक याद जमेगी। कभी कभार किसी के साथ शांति से बैठ जाना, वो खामोशी से इतना प्यार बांट जाते हैं वो लोग, उनकी कहानियां लोगों के दिलों में छाप छोड़ जाती है, गहरी छाप। शांति है जो गहरी छाप छोड़ती है, वरना शोर शराबा तो रौनक है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। नहीं हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज के सफर में। और एक रात एक कहानी। एक आदमी था, उसने अपनी पूरी जिंदगी कुछ बनने में नहीं, कुछ लोगों के लिए होने में गुजार दी। कभी बेटे की फीस भरी, कभी माँ बाप की दवा लाया, कभी अपने सपनों को छुपाकर घर के सपने पूरे किए। उसने कभी अपने थकान की कहानी नहीं सुनाई, बस हर सुबह उठकर जिम्मेदारियों को मुस्कुराकर सलाम किया। साल गुजरते गए, बाल सफेद होते गए, चेहरे पर लकीरें आ गईं, और फिर एक दिन वो आदमी खुद एक कहानी बन गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी किसी को उसकी हंसी याद आई, किसी को उसकी सलाह, किसी को उसका कंधा याद आया, और किसी को वो एक जुमला, फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। तब समझ आया, इंसान अपने बैंक बैलेंस से नहीं, अपनी यादों के बैलेंस से अमीर होता है। नहीं तो आज का एक अगर सवाल आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने शायद कभी हेडलाइंस नहीं बनाई, लेकिन आपकी कहानी का हीरो जरूर बन गया, मैसेज कीजिए। यकीन मानता हूं वो आपके डैड या आपकी मॉम जरूर होंगी, वो दोनों ही होंगे हीरो हीरोइन। नहीं, मैं हूं आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज। और मुझे लगता है कि आखिर में हमारे पास घर गाड़ी या दौलत नहीं रहती, रह जाती है तो बस वो कहानियां जो लोग हमारे बारे में मुस्कुराकर सुनाते हैं। नहीं, आ रहा हूं वापस, जियो बिंदास।

0: देखो सपने देखने पर ना कोई टैक्स नहीं लगता, फिर छोटे क्यों देखना यार।
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप।
0: हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में। और बिफोर यू स्लीप आज की रात एक बात दिल में उतार लीजिए, इफ यू आर ड्रीमिंग मेक श्योर यू ड्रीम बिग, यू नेवर नो व्हेन द यूनिवर्स विल से तदास्तु। कभी कभी हम खुद ही अपने सपनों को लिमिट दे देते हैं, भाई इतना सा मिल जाए बस हो जाएगा, इतना सा यार इतना काफी है, मेरे पास इतनी सी बात पूरी हो जाए बस, मैं तो कह रहा हूँ बस सब कुछ हो जाएगा मेरे को, इतना बड़ा कौन सोचता है। लेकिन जरा सोचिए, हर बड़ी बिल्डिंग पहले एक ख्याल थी, हर सफल इंसान पहले एक सपना था, और हर कहानी की शुरुआत किसी ने व्हाट इफ से शुरू करी थी। हो सकता है आज जो सपना आपको बहुत बड़ा लग रहा हो कल वही आपकी रियलिटी बन जाए, और फिर आप पीछे मुड़कर सोचो कि यार अच्छा हुआ मैंने उस दिन छोटा नहीं सोचा। तो आज सोने से पहले अपने सपनों को थोड़ा और आसमान दीजिए, थोड़ा और यकीन दीजिए अपने ऊपर, खुद पर। क्या पता कल सुबह यूनिवर्स मुस्कुराकर कहे तथास्तु। मैं हूं आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में। याद रखिए, यूनिवर्स का लॉ ये है कि वो आपको सुनता है, जो आप कहते हैं एटलीस्ट दिन में एक बार तो सुनता है। तो ख्वाब जितने बड़े होते हैं उन्हें पूरा करने का हौसला भी उतना ही बड़ा हो जाता है। सपने देखिए, यकीन रखिए, और मुस्कुराकर इस प्यारी सी धुन को मेरे साथ एंजॉय कीजिए। जी, उपिंदास।

देखो, हर रात का एक आखिरी पल होता है और हर आखिरी पल एक नई सुबह का वादा करता है, समझे? Hey, hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में। और दोस्तों, आज के मिडनाइट लाउंज की महफिल यहीं तक। आज हमने यादों के कुछ पन्ने पलटे, कुछ कहानियों में खुद को ढूंढा और कुछ सपनों को और बड़ा करने की बात की और कुछ एहसासों को दिल के करीब महसूस किया। जाने से पहले बस एक बात कहूंगा, अगर जिंदगी आज आपको वही नहीं दिख रही जो आप चाहते हो तो हिम्मत मत हारना जनाब। हो सकता है कहानी अभी लिखी जा रही हो और बेस्ट चैप्टर तक अभी आप पहुंच ही ना हो। अब रात को आप आराम करने दीजिए, चांद को पहरा देने दीजिए और ख्वाबों को आपके लिए नई तस्वीर बनाने दीजिए। मैं हूं आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज। फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी फ्रिक्वेंसी पर और इसी अपनेपन के साथ। खुद पर भरोसा रखना है, सपनों को जिंदा रखना है और मुस्कुराहट को कभी रिटायर नहीं करना है। 106.3 रेडियो ऑल ओवर दिल से कहते रहिए जियो बिंदास। गुड नाइट, बाय बाय।

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिन

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।